0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா.

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़

FM 101.6 MHz पर आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की नवी तिथि, तदनुसार 30 जून 2026 प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी।

0: जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो रहे हैं। समय है आज के विचार का, ईश्वर और जीव, इस विषय पर है आज का विचार। वाचक स्वर है श्री मिलिंद पांडे का।
3: ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश है और उसका अंश होने से जीव मात्र में ईश्वर के प्रति स्वतः एक आकर्षण विद्यमान है। यह सिद्धांत है कि आकर्षण

0: सजातीयता में होता है। अतः हर अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंके गए पत्थर का स्वतः पृथ्वी की तरफ आकर्षण होता है, उसी प्रकार भगवान और उनका अंश जीव दोनों ही अविनाशी हैं। ऐसे ही उनके बीच यह आकर्षण भी अविनाशी है। लेकिन जब जीव अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है, शरीर को मेरेपन से जोड़ लेता है, तब यही आकर्षण संसार की तरफ हो जाता है। वास्तव में संसार की तरफ शरीर का ही आकर्षण होता है, क्योंकि शरीर समष्टि संसार का अंश है। लेकिन शरीर से तादात्म्य होने के कारण जीव उस आकर्षण को अपना मानता है। जीव में जो एक स्वतः सिद्ध आकर्षण है, वह ईश्वर की तरफ होने से प्रेम और संसार की तरफ होने से राग हो जाता है। संसार का आकर्षण बढ़ता रहता है और ईश्वर का आकर्षण भी बढ़ता रहता है, लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर ये है कि अनित्य होने से संसार का आकर्षण भी अनित्य होता है और नित्य होने से ईश्वर का आकर्षण भी नित्य होता है। इसलिए संसार का रस तो नीरसता में बदल जाता है, लेकिन प्रेम का रस सदा सरस रहता है। वह प्रेम रस प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, उसका कभी अंत आता ही नहीं है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जीव तो संसार में आकर्षण पैदा करके ईश्वर से विमुख हो जाता है, लेकिन ईश्वर कभी भी जीव से विमुख नहीं होता। जीव के प्रति उनमें प्रेम कभी किंचन मात्र भी कम नहीं होता, क्योंकि वे पूर्ण हैं। इस प्रेम के कारण ही ईश्वर जीव को निरंतर अपनी ओर खींचते रहते हैं। उसको किसी भी अवस्था परिस्थिति आदि में टिकने नहीं देते। कोई भी अवस्था परिस्थिति नित्य नहीं रहती। जीव जिसको भी पकड़ता है, उसको ईश्वर छुड़ा देते हैं। यही ईश्वर का जीव को अपनी ओर खींचना है। इतना ही नहीं, जीव को सांसारिक भोग और संग्रह से स्वतः अरुचि ग्लानि भी होती है, लेकिन हृदय में भोग और संग्रह का ही महत्व होने से वह उनको पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं है। ईश्वर उसे छुड़ाने का प्रयास करते हैं। इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, तभी वह अपने को उस पूर्ण में पूर्ण की तरफ जाने के लिए पूर्ण की ओर अग्रसरित हो सकता है।
1: आप सुन रहे थे आज का विचार। आज के विचार का विषय था ईश्वर और जीव। वाचक स्वर था श्री मिलिंद पांडे का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 होने को हैं। समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं हरिओम सरन, नंदिनी सरन और साथियों के गाए इस भजन के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अनूप चलोटा और साथियों की प्रस्तुति आपने सुनी। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और साथियों के साथ।

जगजीत सिंह और साथियों की गाए इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:30 बजने को है, समय है रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 199 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 200 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर है राजेंद्र जोगलेकर का।

अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है, वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इसबगोल की खेती विषय पर जानकारी देंगे श्री रामस्वरूप बिश्नोई। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, संसदीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नए भारत का निर्माण, मोदी सरकार के 12 वर्ष।

इन विषयों पर होगी चर्चाएं। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप हमारी पहली सभा में सुबह 7:30 बजे ले सकेंगे। तत्पश्चात सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप भूले बिसरे गीतों का आनंद ले सकेंगे। दिन में 12:40 और दोपहर 2:30 बजे का समय भी रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आकाशवाणी जयपुर से दोपहर 12:10 पर प्रसारित किया जाएगा सिंधी कार्यक्रम।

दोपहर 1:05 का समय रहेगा कार्यक्रम घर आंगन का। चर्चाएं रहेंगी ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल संचयन में महिलाओं की पारंपरिक समझ, दादाभाई नौरोजी पुण्यतिथि जैसे विषयों पर। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में युवा साथी सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज की बात होगी शालीनता और सहजता में ही है आनंद। लघु जानकारियां युवा साथी सुनेंगे, नशा मुक्त युवा भारत, सुनने की आदत विकसित करें, क्वांटम कंप्यूटर और प्रशांत महासागर पर। दूसरी सभा में शाम 6:05 पर एक ही संगीतकार को आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में।

सुबह 8:30 बजे लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में होगा काव्य पाठ, कवि रहेंगे सरल विशारद। सुबह 8:45 का समय रहेगा रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम का। श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। जी हाँ, सुबह 8:45 पर वाचक स्वर होगा श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम लेखा के, संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। सुबह 9:10 का समय रहेगा लोक संगीत का। 9:30 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उमंग NCERT। दूसरी सभा में 7:00 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के प्रथम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य ओवल लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। जी हां, 7:00 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के प्रथम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य ओवल लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।

0: ये था हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:45 हो रहे हैं। किसान श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसबगोल की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री राम स्वरूप बिश्नोई।
1: किसान भाई राम राम। खेती बातें कार्यक्रम में आज आप बातचीत करने ला इसबगोल की खेती। बिया इसबगोल शीतोष्ण जलवायु की फसल है जो को औषधीय रूप में काम आवे। बीरे जो बीजा रो बीजावरण है वो दवा रूप में प्रयोग में लाई जाए आ बात आप सगला जानो हो। और बीरो रंग गुलाबी हुए बिया साधारणतः लोग इसबगोल री भूसी है जके ने काम में लेवे। इसबगोल जो को फारसी शब्द है वो इसब बण्यो जके रो मतलब हुआ घोड़ो और गोल रो मतलब हुआ कान। कैन रो मतलब इरा जका बीज रो आकार है वो घोड़े रे कान री तरह हुए है। ई बात ने तो आप सगला जाना हाँ। इसबगोल प्लेटेनिजस कुल रो पौधो है जो को एक वर्षीय हुआ है।

0: बियां बीर खातर हल्की बुलई मिट्टी और समुचित जल निकास रो प्रबंधन होनो घणो जरूरी है। अपने अठे मरुस्थली माटी माए आजकल ई सब गुण घणो पैदावार देवे। ई रही जको मृदा रो तापमान है वो पीएच 7-8 होनो चाहिए। पकती टेम नमी नहीं रहे, बरखा नहीं रहे तो फूटरो असर रहे सा। ई सब गुण रो पौध साधारणतः 30-45 मीटर ऊंचो हुए। बीरो तनो है वो आभासी हुए जको रोएदार और गांठियों रहित हुए। बुआई रे 60-70 दिन बाद पौधे में सू 25-100 फुटान निकलिया करे। जड़ा संकड़ी हुए और पत्तियां लंबी और रोएदार हुए, जबकि 8 सेंटीमीटर तई लंबी और 0.6 सेंटीमीटर तई चौड़ी हो सके। ऐसा पौधे रो जको आधार है वो आगे जाए फल देवे। और अपा ई बात ने जाना कि सफ़ेद रंग रा जका चिकना पौध हुए वे घना गुणकारी हुए। बीज रो आवरण जो को है वो मायने सू गुलाबी और सफ़ेद झिल्ली आलो हुए। देखने वाली बात आ है कि इरी कई किस्म आप काम में लेवा। जके में गुजरात ई सब गुल 2 पौधे री ऊंचाई 25-30 सेंटीमीटर हुए। बीरी फुटान बेगी हुआ करे और बीरी किस्म पकने मायने 135-140 दिन लाग्या करे। आज की किस्म है प्रति बिघा 2-2.5 क्विंटल तई पैदावार देवे सा। खेत रो चुनाव करती बगत आपने बलुई दोमट मिट्टी जकी समतल हुए, खेत एकदम पादरो सीधो सपाट हुए, जल रो निकास उपजाऊ भूमि ने और फूटरो बना देवे। भूमि अगर क्षारीय या लवणीय है तो बीरी खेती नहीं करनी चाहिए सा। खेतरी तैयारी टाइम मिट्टी पलटन नाले हलू एक गहरी जुताई करनी। बाद में 2-3 जुताई देसी हल सूकर आप सुहागो लगान खेती तैयार कर सको सा। इस सबरी बुआई रो हाथरो टेम 25 अक्टूबर लेन 15 नवंबर तई होया करे। पण बीरी जकी पछेती किस्म है बे आप भगत माते बो सको हो। भूमि रो उपचार सारू आप दीमकरी रोकथाम सारू अंतिम जुताई सू पहली 1.5% क्यूनोलाफास या फिर 4% एंडोसल्फास 4 किलो चूर्ण प्रति बीघा रहित साबुन खेत में छिड़काव कर सको हो। बीजरी मात्रा और बुआई विधि रो पूरो फूटरो ध्यान रखनो ऐसा। इरो बीज घणो छोटो हुए तो बीर वास्ते छिड़क कर मिट्टी में मिला देनो ताकि बीज गहरो न जा सके और बीर माथे मिट्टी नहीं पड़े। छिड़क कर बुआई करण पर आप 1.5-2 किलो तई इस सब गोल रो बीजरी प्रति बीघा जरूरत सारू बो सको सा। फूटरी और सांतरी पैदावार लेवण तई बोने हूँ पहली 10 किलो नत्रजन या फिर 6 किलो फास्फोरस प्रति बीघारी दरसों ड्रिल करो। आपरी खेतरी माटी जे रेतीली है तो 0.5 किलो नत्रजन बुआई रे टेम और बादल जो को नत्रजन है वो आप पहली सिंचाई सू टेम माथे दिया करो। फूटरी निराई गुड़ाई री जरूरत रहे। निराई गुड़ाई सारू आप करीब 40 दिन बाद दूजी और 75-70 दिन बाद तीसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जैसा निराई रे सागे सागे गुड़ाई करनो फसल रे खातर घणो लाभप्रद है। आ बात तो सह जानो। इरी सिंचाई सारू बुआई रे 8-10 दिन बाद बीज उगाव शुरू हो जावे। अच्छे उगाव रे खातर रेतीली भूमि री बुआई में 5-6 दिन पछे और दोमट मिट्टी वाला खेत रे मायने 10-15 दिन पछे हल्की सिंचाई करो। इस सब गुल री फसल खातर 3-4 सिंचाई की जरूरत रहे। दिसंबर जनवरी रे महीने माए 25-30 दिन और फरवरी रे मायने 20 दिन रे अंतर सू आप सिंचाई कर सको।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इसबगोल की खेती विषय पर जानकारी दी थी श्री रामस्वरूप बिश्नोई ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातःकाल के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गणेश नाथ का गाया लोक भजन।

0: आप सुन रहे थे लोक भजन, कलाकार थे गणेश नाथ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर प्रातःकाल के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 30 जून, जून के महीने की आखिरी तारीख, और ये तारीख ख़ास है क्योंकि ये जोड़ती है हमें विज्ञान से। जी हाँ, आज 30 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद क्षुद्र ग्रहों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना और पृथ्वी की सुरक्षा से जुड़े वैज्ञानिक प्रयासों को प्रोत्साहन देना है। श्रोताओं, दरअसल क्षुद्र ग्रह सौर मंडल से जुड़े ऐसे छोटे पथरीले पिंड हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। जी हाँ, अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरों में पाए जाते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश पृथ्वी से बहुत

सौरमंडल से जुड़े ऐसे छोटे पथरीले पिंड हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। जी हाँ, अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरों में पाए जाते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश पृथ्वी से बहुत दूर रहते हैं, फिर भी कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी कक्षाएं जमीन यानी पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरती हैं। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक आधुनिक दूरबीनों और अंतरिक्ष अभियानों की मदद से इन पर निरंतर नजर रखते हैं। श्रोताओं, सवाल पैदा होता है कि आज ही का दिन 30 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? तो इसका जवाब है श्रोताओं, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक विशाल अंतरिक्षीय पिंड के विस्फोट से व्यापक क्षेत्र प्रभावित हुआ। इस घटना ने मानवता को यह समझाया कि अंतरिक्ष से आने वाली प्राकृतिक चुनौतियों के प्रति सतर्क रहना कितना ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हमें यह संदेश देता है कि विज्ञान केवल ज्ञान का माध्यम ही नहीं बल्कि मानव जीवन और पृथ्वी की सुरक्षा का भी आधार है। अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक सहयोग और नई तकनीकों के जरिए हम भविष्य की संभावित चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। आज के दिन इस अवसर पर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति सम्मान का संकल्प लें। ये चांद सितारे सिर्फ आसमान तक महदूद नहीं हैं श्रोताओं, ये हमारी जमीन से जुड़े हैं। इनका जिक्र हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में भी रहता है। हमारे गीत भी इन चांद सितारों से अछूते नहीं हैं। हमें तो चांद सितारों की दुनिया वैसे भी एक निराली और अनोखी दुनिया लगती है, जो हमेशा ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती आई है। जब भी हमने चांद सितारों से जुड़े गीत सुने हैं, हमें लगा है हम अलग ही दुनिया में हैं। तो चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के मौके पर चांद सितारों के नाम करते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: What a beauty! आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: Point noted, Mr.
1: रोहित।
0: Mr.
1: रोहित।

0: हाँ तो हम कहाँ थे?
1: तुम शायद सितारों की बात कर रही थी।
0: अच्छा मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे?
2: अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन।
3: That's right.

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, आज की तारीख 30 जून अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज समूचा विश्व संसदीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मना रहा है। जी हाँ, ये दिन लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व और संसद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि संसदीय व्यवस्था आखिर है क्या, इसका महत्व क्या है और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में संसद की भूमिका कितनी ज़रूरी है। उससे पहले जानते हैं श्रोताओं के संसदीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया क्यों जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में आज ही के दिन यानी 30 जून को संसदीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इस तिथि का चयन इसने किया गया श्रोताओं क्योंकि 30 जून 1889 को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। ये विश्व के विभिन्न देशों की संसदों का सबसे पुराना वैश्विक संगठन है जो लोकतंत्र, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। आज के दिन का उद्देश्य लोगों को संसद की भूमिका, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन भागीदारी के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। श्रोताओं, सवाल पैदा होता है संसदीय व्यवस्था क्या है। हम सभी जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए संचालित होती है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सांसदों का चुनाव करती है और यही सांसद सरकार के गठन और उसके कार्यों की निगरानी करते हैं। इस व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर संसद का विश्वास सरकार से उठ जाता है तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। यही जवाबदेही संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। श्रोताओं, बात करते हैं भारत की संसद की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ श्रोताओं, लोकसभा को जनता सीधे चुनती है जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद के मुख्य कार्यों में कानून को बनाना, सरकार की नीतियों पर चर्चा करना, बजट को मंजूरी देना, जनता के मुद्दों को उठाना और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। संसदीय प्रणाली दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। श्रोताओं, लोकतंत्र केवल चुनाव करवाने का नाम ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का वास्तविक मतलब है जनता की भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का शासन। संसद वो मंच है जहां विभिन्न विचारों, मतों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। यहां देश हित से जुड़े मुद्दों पर बहस होती है और फिर समाधान खोजे जाते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है श्रोताओं के संसद में सार्थक चर्चा हो, सभी पक्ष अपनी बात रखें, निर्णय संविधान की भावनाओं के अनुरूप लिए जाएं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है श्रोताओं, बात आती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की जो कि है नागरिकों की। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अकेली संसद ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हर नागरिक को चाहिए कि वो मतदान जरूर करे, संविधान का सम्मान करे, सही जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाए, सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें। जब नागरिक जागरूक होते हैं तभी संसद भी अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनती है। समय बदल रहा है और समय के साथ साथ हर क्षेत्र की चुनौतियां और व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। श्रोताओं, आज दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों के सामने बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि इस AI के दौर में, सूचना के दौर में गलत और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार मौजूद है, राजनीतिक ध्रुवीकरण मौजूद है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का घटता विश्वास भी एक बहुत बड़ा कारण है श्रोताओं, और तकनीक और सोशल मीडिया की वजह से सूचनाओं का तेज बहाव भी इस सारी व्यवस्था को बहुत अधिक चुनौती देता है और प्रभावित करता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संसद को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है, साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी इसमें बहुत ज़रूरी है। नागरिकों की अगर बात करें तो युवाओं की भागीदारी को हम कैसे भूल सकते हैं। भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा देशों में से एक है, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रोताओं, युवा मतदान करें, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझें, संविधान के मूल्यों को जानें और उनका

सम्मान करें, सकारात्मक संवाद करें और जागरूकता को बढ़ावा दें। देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। युवा जितने ज़्यादा जागरूक होंगे, श्रोताओं, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संसदीय व्यवस्था केवल शासन चलाने का जरिया नहीं है, बल्कि जनता की आवाज़ को निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली लोकतांत्रिक मंच है। श्रोताओं, संसदीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की सफलता केवल संसद पर नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों, जिम्मेदार प्रतिनिधियों और संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है। श्रोताओं, तो हम कार्यक्रम में ये संकल्प लें, ये इरादा करें, ये नियत करें कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेंगे, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे और एक मजबूत, समावेशी और उत्तरदायी लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये देश है ही ऐसा जिस पर हमें हमेशा ही गर्व होता रहा है और इस गर्व को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। देश के प्रति अपनी जागरूकताओं को, अपने कर्तव्य निष्ठाओं को हमेशा निभाएंगे। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं हमारे देश से जुड़ा ये गीत।

श्रोताओं, भारत की जब भी बात होती है, भारत निरंतर विकास कर रहा है और विकासशील से विकसित भारत की ओर जा रहा है, ये ख्याल मजबूत हो जाता है। आज कार्यक्रम में आपसे हम बात कर रहे हैं नए भारत का निर्माण, मोदी सरकार के 12 साल। इस विषय पर भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। श्रोताओं, बीते सालों में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अनेक क्षेत्रों में बहुत काम किया है। सबसे पहले अगर बात की जाए बुनियादी ढांचे की, तो देश भर में आधुनिक एक्सप्रेसवे, नए राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, नए हवाई अड्डों का निर्माण, बंदरगाहों के विकास पर बहुत खास जोर दिया गया है। बात करें अगर डिजिटल भारत की, तो डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, आधार आधारित सुविधाएं और यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने आम नागरिक की जिंदगी को सुविधाजनक बनाया है। गरीब कल्याण की ओर अगर रुख करें, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाखों परिवारों को उनके पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को LPG गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की दिशा में काम हुआ है। इसी तरह से अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। सिंचाई, आधुनिक खेती, प्राकृतिक कृषि, कृषि तकनीक के उपयोगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। अगर महिला सशक्तिकरण का जिक्र हो, तो हम मोदी सरकार की बात करना नहीं भूल सकते। महिलाओं के लिए स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, मातृत्व लाभ योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न पहल को आगे बढ़ाया गया है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। युवा रोजगार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नवाचार को बढ़ावा देने की

इंस्टीट्यूशन के जरिए से युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया गया है। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हुआ है, वहीं पर्यावरण और स्वच्छता का क्षेत्र भी बहुत सारे अभियानों से भरा रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका की अगर बात करें तो भारत वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभिन्न देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी के जरिए भारत ने अपनी उपस्थिति को और सशक्त बनाने की कोशिश की गई। तो श्रोताओं, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 12 सालों का ये सफ़र बहुत अधिक प्रभावशाली रहा है। हमारे देश के नाम कार्यक्रम का अंतिम गीत करते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, हम अपने निगाहों में जो ख्वाब बसे हैं उन्हें कभी भी बुझने नहीं देंगे। अपने ख्वाबों के लिए प्रयास करेंगे, देश के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दिया गया। नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

साथी आवाज़ आप लता मंगेशकर की सुनेंगे। फिल्म है जाने अनजाने। एसएच बिहारी ने गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म आंधी से गुलजार का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

में लीजिए सुनिए, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो।

ये गीत फिल्म लव इन टोक्यो से आपने सुना। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है अभिमान, आवाज लता मंगेशकर की है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है, एसडी बर्मन का है संगीत।

ये गीत फिल्म आपकी कसम से आपने सुना, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अंत आखिरी गीत लीजिए सुनिए, फिल्म हम दोनों से आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की हैं।

0: आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गाए इस गीत के साथ जो था फिल्म हम दोनों से फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल

0: की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9

0: सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे।

0: और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार।

0: पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. At the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per

बीमार पड़ा और डरा तब भी काला ही रहा, मृत्यु के समय काला ही रहूंगा, मृत्यु के समय काला ही रहूंगा। तुम गोरे हो जन्म से, तुम गोरे हो जन्म से, बड़े हुए तब गुलाबी, धूप में निकलते हो जाते हो लाल, धूप में निकलते ही हो जाते हो लाल, डर तुम्हें पीला कर देता है, डर तुम्हें पीला कर देता है, बीमारी तुम्हें कर देती है हरा, मरते समय हो जाते हो भूरे और मटमेले, बीमारी तुम्हें कर देती है हरा, मरते समय हो जाते हो भूरे और मटमैले, मरते समय हो जाते हो भूरे और मटमैले। कितने कितने रंग बदलते हो तुम, कितने कितने रंग बदलते हो तुम, अर्थ भी बदलते हैं तुम्हारी रंगबाजी के, कितने कितने रंग बदलते हो तुम, अर्थ भी बदलते हैं तुम्हारी रंगबाजी के, पर रंग नहीं बदलते शब्द, पर रंग नहीं बदलते शब्द। काई ही काई है। अगली कविता है, किस घाट रुकूं, किस घाट रुकूं, उतरूं किस घाट, काई ही काई है घाटों पर, किस घाट रुकूं, उतरूं किस घाट, काई ही काई है घाटों पर, आत्मघाती होता है बीच का सफर, आत्मघाती होता है बीच का सफर, इधर उधर की भटकन और फिसलन, आत्मघाती होता है बीच का सफर, इधर उधर की भटकन फिसलन, यूं ही मिलते बिछुड़ते लड़ते झगड़ते पार हो ही जाऊंगा लहरों के सहारे, यूं ही मिलते बिछुड़ते लड़ते झगड़ते पार हो ही जाऊंगा लहरों के सहारे, डूबूंगा तो नहीं, डूबूंगा तो नहीं, काई काई है घाटों पर, काई काई है घाटों पर। अगली कविता है, मैं भीतर कुछ नहीं रखता, मैं भीतर कुछ नहीं रखता, उड़ेल देता हूँ मोती मणियाँ कचरा कांच सीप और मछलियाँ, मैं भीतर कुछ नहीं रखता, उड़ेल देता हूँ मोती मणियाँ कांच कचरा कांच सीप और मछलियाँ, सिर्फ पानी और पानी ही रहता है मेरी पहचान, सिर्फ पानी और पानी ही रहता है मेरी पहचान, डूब कर ही जाना जा सकता है रश, बंद ही रहती हैं पानी में दो आँखें, बंद ही रहती हैं पानी में दो आँखें, देखते हुए डूबा नहीं जा सकता, खुले रहते हैं पानी में कान, सुना जा सकता है पानी का अर्थनाद, खुले रहते हैं पानी खुले रहते हैं पानी में कान, सुना जा सकता है पानी का आर्तनाद, मैं भीतर कुछ नहीं रखता सिवा पानी के, मैं भीतर कुछ नहीं रखता सिवा पानी के, कई कई नदियों का घर हूँ मैं, कई कई नदियों का घर हूँ मैं, सागर हूँ भीतर कुछ नहीं रखता। अगली कविता है, टूटा जरूर है कुछ न कुछ, टूटा जरूर है, हाँ टूटा है कुछ न कुछ, टूटा जरूर है, हाँ टूटा है, वर्षों पहले टूट गया था गिलास, रखता था जिसे टेबल के आसपास, वर्षों पहले टूट गया था गिलास, रखता था जिसे टेबल के आसपास, नियति समझ कर लिया विश्वास, कभी नींद कभी सपने तो कभी संकल्प, कुछ न कुछ टूटा जरूर है, कभी नींद कभी सपने तो कभी संकल्प, कुछ न कुछ टूटा जरूर है, कभी उम्मीद कभी मनोबल, कभी रिश्तों की डोर, कभी उम्मीद कभी मनोबल, कभी रिश्तों की डोर, कुछ न कुछ टूटा है जरूर, मुझ में भी और मेरे देश में भी इस दौर में, कुछ न कुछ टूटा है जरूर, मुझ में भी मेरे देश में भी इस दौर में, कुछ न कुछ टूटा है जरूर। अगली कविता है, मैं इतिहास हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, इतिहास हूँ कब तक भागते फिरोगे मुझसे, मैं इतिहास हूँ तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, इतिहास हूँ कब तक भागते फिरोगे मुझसे, छाया की तरह कभी आगे तो कभी पीछे आता ही रहूँगा,

0: किसी को माफ नहीं करता मैं, गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी, कब तक बसते रहोगे, मैंने किसी को नहीं किया माफ, राम हो या रावण सबको दिखाई देता हूँ साफ साफ, तुम कब तक चौंधियाए भागते फिरोगे, इतिहास सबका होता है, इतिहास सबका होता है, मेरा भी तुम्हारा भी, मैं भूत हूँ, दिखता हूँ वर्तमान में, कब तक अनदेखा करते रह फिरोगे, देश विदेश मैं इतिहास हूँ, माफ नहीं करता किसी को। टकराना जरूर है, हर बार टकराना पड़ता है पूंजी की प्राचीरों से, हर बार टकराना पड़ता है पूंजी की प्राचीरों से, टकराती है जैसे नदी कुलीन किनारों से, टकराती है जैसे नदी कुलीन किनारों से, मचल उठता है सागर का कलेजा, टकराती है जैसे हवा पहाड़ों वनों और मरु की माटी से, टकराती है जैसे हवा पहाड़ों वनों और मरु की माटी से, उठती है आंधी शहरों की ओर, टकराता है जैसे हवा में सूखा पत्ता एक आवाज़ बनने को, टकराता है जैसे हवा में सूखा पत्ता एक आवाज़ बनने को, टकराते हैं जैसे जल कण बादलों में, दमक उठती है दामनी नभ में, ऊर्जा के लिए टकराना जरूरी है बार बार, ऊर्जा के लिए टकराना जरूरी है बार बार, जिंदा आदमी ही टकराते हैं एक दूजे से, जिंदा आदमी ही टकराते हैं एक दूजे से, जैसे हम तुम नए सृजन की खातिर, जिंदा आदमी ही टकराते हैं एक दूजे से, जैसे हम तुम नए सृजन की खातिर, कभी कभी अपने आप से भी टकराना पड़ता है, कभी कभी अपने आप से भी टकराना पड़ता है, जैसे ब्रह्मांड से टकराता है ईश्वरीय तत्व, जैसे ब्रह्मांड से टकराता है ईश्वरीय तत्व, दो पत्थरों की टकराहट ही आदिम आग है, दो पत्थरों की टकराहट ही आदिम आग है, और दो आँखों की टकराहट आदिम राग, और दो आँखों की टकराहट आदिम राग, विपरीत ध्रुवों की टकराहट से पैदा होती है क्रांतियाँ, विपरीत ध्रुवों की टकराहट से पैदा होती है क्रांतियाँ, इसलिए मैं बार बार टकराता हूँ पूंजी की प्राचीरों से, पहरेदारों से, टकराहट जरूरी है जिंदगी के लिए, टकराहट जरूरी है जिंदगी के लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
5: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, लीजिए सुनिए देशभक्ति सहगान।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति सहगान। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। समय है श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा का। कार्यक्रम में सुनिए वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा का। प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेखा के, संयोजन करता है श्री अमित सिंह।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज के मेहमान श्रोता की बात करें, उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम के लिए हम आप जैसे पुराने और सुधी श्रोताओं से संपर्क करते हैं और फिर उनके पास जाकर उनकी यादें और अनुभवों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में तैयार होता है रेडियो का सफरनामा, जिसे अभी आप सुन रहे हैं। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के मेहमान श्रोता कौन है। आप हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। आप बीकानेर में रहते हैं। आप क्या कहते हैं आकाशवाणी से परिचय के बारे में? बहुत ही रोचक बात है।
3: रेडियो का मेरा जो वो है संयोग सुनने का, ये मेरे होश संभालने से पहले का ही है। मैं इसमें एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे माता जी और पिताजी मेरे को कहते थे कि जब मैं बहुत छोटा था, कुछ महीनों का या कुछ साल के रहा होगा, तो मेरी मदर को काम करना पड़ता था किचन में, तो मैं रोता था। तो मेरे पिताजी उस वक्त, उनके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था जिसमें वो चमड़े का कवर भी रखते थे, बड़ा छोटे से बड़ा क्यूट सा, तो वो उसको बजा के मेरे सिराने रख देते थे, तो मैं रोना भूल जाता था और बड़ा खेलने लगता था उसी के साथ। ये ऐसी मेरी माता जी ये मुझे बताती है कि बचपन से तू इतना शौकीन रहा।

0: वो दिन और आज का दिन अभी तक मैं आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, सुनता हूँ, इंजॉय करता हूँ उसके सारे कार्यक्रम।
1: सुना आपने श्रोताओं, रेडियो बच्चों के हाथ में देने से वो प्रोग्राम सुनकर रोना भूल जाते, जिसमें से एक दिनेश जी भी थे। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बचपन के बाद किशोर और युवा अवस्था की यादें बताते हुए कहा कि वो एक गीत सुना करते थे, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे। दिनेश जी जब इस गाने को सुनकर एक दिन अपने पिता से ही पूछा कि पिताजी ये नाना क्यों प्यार करते हैं, चलिए पूरी बात उन्हीं की जुबान से सुनिए।
0: बहुत सी ऐसी यादें हैं, हमारे मेरे पिताजी को बड़ा शौक था इसका रेडियो सुनने का, तो हमारे घर में इनवेरिएबली रेडियो बजता रहता था, तो उसमें कई बार ऐसे गाने आते थे। तो उसमें एक जब मेरा जन्म हुआ था उसके बाद की बात, ये फिल्म आई थी जब जब फूल खिले, इसमें गाना था नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। तो मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि पापा ये नाना क्यों प्यार करते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि नाना करते प्यार का मतलब क्या होता है।

0: यहाँ से मतलब यादें जुड़ी हैं मेरे रेडियो स्टेशन की, और मेरे फादर के साथ वो दिन भर वो पेट पर रख के गाने सुनते रहते थे, मैं उनके पास खेलता रहता था, तो मतलब धीरे धीरे वो संस्कार मेरे कानों में पड़ते गए और वो इतना शौक डेवलप हुआ, इतना शौक डेवलप हुआ कि आज तक मेरे 60 साल की उम्र के बाद भी मुझे ये शौक है।
1: आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी में आने की घटना आपने कैसे बताई।
0: ये आकाशवाणी से हम लोग बीकानेर जब आए शिफ्ट हुए यहाँ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, तो मुझे मेरी सिस्टर हैं जो अपने बैंक में अब रिटायर हो चुकी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आकाशवाणी में प्रोग्राम वगैरह होते हैं और तुम कोशिश कर सकते हो। तो ये बात है सन 77 के आसपास की, तो आपको विश्वास नहीं होगा, जब ये मैं साइकिल लेकर ये डूंगर कॉलेज के आगे काफ़ी एक सागर रोड पर वो इसका आकाशवाणी का एक टावर लगा हुआ था, तो मैं उसको रेडियो स्टेशन समझता था कि ये रेडियो स्टेशन है। मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कोई भी मुझे नहीं मिला, एक बंदा मिला, उससे पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि आकाशवाणी का स्टूडियो तो करणी सिंह स्टेडियम के पास था, आप वहाँ जाओ। तो भरी दोपहर में मैं साइकिल लेके वापस आया और वहाँ के मैंने पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ स्टूडियो है, आप कभी भी आके अपने प्रोग्राम की एप्लीकेशन दे सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन दी और उसके बाद वार्ता में लिखता था, साइंस का विद्यार्थी था तो वार्ता लिखता था, मिर्गी के ऊपर मैंने वार्ता लिखी, जुकाम बुखार के ऊपर वार्ता लिखी, कैसे करना चाहिए, वो युववाणी में मेरा प्रसारित हुई और सबसे पहले मैं युववाणी से ही जुड़ा था और वो युववाणी के कई प्रोग्राम किए, फिर मैंने ऑडिशन भी पास किया लोक संगीत में, तो लोकगीत भी गाए, तो इतना अच्छा समय था ना उस वक्त, यहाँ टीवी और ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो सारा जो कंसंट्रेशन थी सारा मनोरंजन हमारा रेडियो से ही होता था और वही हमें उसके सारे गाने सारे उसके प्रोग्राम हमें आज तक आत्मसात हैं।
1: युवाणी कार्यक्रम के लिए कैसे आपका चयन हुआ, क्या सीखा, क्या कहा आपने?
0: सबसे पहले युवाणी में हम गए थे सिर्फ ये पता करने कि हम क्या प्रोग्राम दे सकते हैं, तो वहाँ बहुत पहले की बात है कंवर अहमद सर थे वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने हमको बताया कि आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, आप उनको वार्ता लिख के दी, उन्होंने पढ़ी और बोला कि हम आपको 2-3 दिन बाद बताएंगे कि क्या करना है। फिर मैंने जब ऑडिशन पास किया तो सुशील कांत सिन्हा जी थे उनके साथ काफ़ी रहा, वो लंबे समय तक रहे और लंबे समय तक उनके समय मैं आकाशवाणी में प्रोग्राम देता रहा, लोक संगीत के, माऊ सरगन वादन के, वार्ता और ये परिचर्चा इनमें भाग लेता रहा। उसके बाद ये लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आए, इनके साथ भी 1-2 प्रोग्राम किए और इनसे मैंने काफ़ी सीखा रिकॉर्डिंग करने का तरीके, बैठ मैं जैसे लोक संगीत गाता था तो मैं हिल हिल के गाता था, तो सुशील कांत जी ने स्पेशली मेरे को बोला तुम हिलोगे नहीं कि आवाज़ वाइब्रेट आता है, वो बात मैंने आज तक आत्मसात कर रखी है, अभी भी मैं उसको फॉलो करता हूँ उन चीज़ों को।
1: युवाणी में गीतों भरी कहानी में भी आपकी सहभागिता रही।
0: गीतों भरी कहानी आती थी, उसमें एक युवा वर्ग के जो कलाकार होते थे अपनी कहानी लिखते थे और उसमें गीत अपने पसंद के डाला करते थे, तो ये कहानी के लिए मैंने एक लिख के दिया और वो कहानी पसंद आई लोगों को, तो उसमें मैंने गीत वगैरह भी डाले थे, तो मुझे अच्छे से याद है वो 1 जनवरी 1981 को गीतों भरी कहानी, उस दिन रविवार था, रविवार को आती थी, युववाणी कार्यक्रम में आई थी और उसमें जो वाचक स्वर जो था महेंद्र मोदी उस वक्त बहुत बड़े एक

0: अनाउंस होते थे, अब विविध भारती से जाके रिटायर भी शायद हो गए, उन्होंने एक वाचक स्वर दिया था। वो कहानी मुझे आज तक याद है और मैंने उसको आज तक रिकॉर्ड कर रखी है कहानी को। उस वक्त कैसेट वाला टेप आया करता था, तो मेरी सिस्टर को बोल के मैंने उनको कैसेट का मंगवाया, खरीदा, किसी से रिकॉर्ड कराया और वो अपने पास रखा। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार चीज़ है कि 1 जनवरी 1981 में मेरा पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था।
1: श्रोताओं, हम बता दें कि आपका चयन लोक संगीत के कलाकार के रूप में भी हुआ था।
0: लोक संगीत की जब ऑडिशन में मैं गया तो जोधपुर के आकाशवाणी की टीम आई थी, यहाँ लोकल टीम यहाँ वो नहीं करती थी, तो मुझे मैंने एप्लीकेशन दे रखा था, नाम आया मेरा, मुझे अंदर बुलाया तो स्टूडियो के अंदर गया, तो जहाँ साजिंदे बैठते हैं उसके अपोजिट साइड में रिकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ बीच में एक कर्टन लगा रखा था ताकि हमें मालूम नहीं पड़े वहाँ कौन बैठा और यहाँ कौन बैठा है। उन्होंने मेरा रोल नंबर पूछा, मैंने बताया, तो क्या क्या गाओगे आप, तो मैंने कहा लोक संगीत, तो क्योंकि गाना सुनाओ, फिर मैंने एक दो गाने सुनाए एक के बाद एक बताए, फिर उन्होंने बोला कि आप सुरताल में हो, कोई ऐसा गाना बताओ जो आपको कम पसंद हो, फिर वो गा के मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि धन्यवाद हम आपको बताएंगे, फिर 1.5 महीने के बाद उसका रिजल्ट आया तो मैं उसमें पास हो गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो शायद वो दिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जिससे उस वक्त आकाशवाणी से अटैच होना भी बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी का काम लगता था, कितना इंपॉर्टेंट काम है। तो मैंने घर पे आके बताया कि मैं आकाशवाणी के लोकगीत के ऑडिशन में पास हो गया हूँ। वो दिन इतना अच्छा लगा ना कि मुझे आज तक उस खुशी का इजहार नहीं कर सकता किसी के सामने मैं।

0: ये गाना मैंने ऑडिशन में गाया था और फिर मेरे साथ में ठीक रहा होगा तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया।
1: आकाशवाणी के कलाकारों और अधिकारियों का जिक्र करते हुए आपने बताया।
0: हाँ, मेरे सामने जब जाते थे तो गिरिधर व्यास जी एक उद्घोषक थे, सरोज भटनागर मैडम थी, वो शायद अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गई हैं, और अरविंद जी थे, यशपाल सिंह राठौड़ थे, और सबसे ज़्यादा फैन मत था चंचल हर्ष जी का। वो जो गाने जब उन सुनाते थे ना तो सारी मेरी पसंद के गाने सुनाते थे जनरली वो रेडियो में, तो मैं उनके प्रोग्राम बहुत सुनता था। और वो उस वक्त रेडियो का इतना महत्व था, रेडियो अनाउंसर की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि वो कहीं रस्ते में मिलते या किसी बाजार में या शादी में हमें मिलते ना तो हम अपने पापा गोमी को दिखाते थे कि पापा देखो चंचल रश है, पापा देखो गिरिधर व्यास ये रेडियो में बोलते हैं ये कर। तो वो ज़माना हमने देखा है, तो ये टीवी और मोबाइल के कारण थोड़ा सा हुआ है, लेकिन आज मैं 90 साल अब ये आकाशवाणी के हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये अपना प्लेटफॉर्म कभी नहीं छोड़ेगा आने वाले वर्षों तक।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी का जिक्र हो तो समय पाबंदी की बात तो मन में आ ही जाती है। क्या कहा दिनेश जी ने समय प्रबंधन के बारे में?
0: मुझे वो याद है कि मैंने मेरे पिताजी से एक बार पूछा था कि ये समाचार जब आते हैं तो टी टी टी आवाज़ क्यों आती है बीप की, तो मेरे पिताजी ने बताया कि लास्ट जो आवाज़ होती है ना इसका मतलब ये है कि वो सेकेंड का कांटा 12 पे आएगा, तो ये घड़ी मिलाने का एक तरीका है। तो वो आज भी हम उसके हिसाब से चलते हैं और टाइम की कीमत रखते हैं, तो ये चीज़ें आकाशवाणी से सीखी है। मैं तो कहूँगा कि आकाशवाणी ने जितने संस्कार सिखाए हैं ना वो उतना मुझे ऐसा लगता है कि दूरदर्शन और टीवी भी नहीं सिखा पाता जितना आकाशवाणी से हम लोग सीखे हैं।
1: भाषा, संप्रेषण, बोलने का तरीका और उच्चारण के मायने क्या होते हैं, आपने डॉक्टर होते हुए क्या अनुभव किया?
0: मुझे आकाशवाणी में जैसे मैं लोक संगीत में था तो मुझे हमारा जो बैकग्राउंड है किसी समय उत्तर प्रदेश की तरफ से है, तो जब मैं गाने गाता था तो मुझे डायरेक्टर जो थे ये बोलते थे कि आपके मारवाड़ी टोन आनी चाहिए संगीत में, मैं पानी बोलता तो पानी बोलना चाहिए। तो ये चीज़ आज भी हम जब रूरल एरिया में, मैंने बहुत काम किया है, कम से कम 15 साल में गाँव में नौकरियाँ की हैं,

0: तो ये संप्रेषण की तरीका, बोलने का तरीका, ये सब मुझे आकाशवाणी से सीखा है मैंने और आज भी मेरे काम आ रहा है। सही बात बताऊंगा, थोड़ी अलग सी आपको लगेगी, लेकिन ये बात सही है कि मैं काफ़ी मैंने प्रोग्राम दिए, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया उदयपुर में, सरकारी नौकरी में चला गया। तो एक दिन मेरे घर पे लेटर आया आकाशवाणी से, सुशील कांत जी सिन्हा यहाँ थे डायरेक्टर, उनका लेटर आया कि आपको आकाशवाणी में कविता पाठ करने बुलाया है। तो मैंने तो ज़िंदगी में कभी कविताएँ लिखी नहीं थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार कविता पाठ अपन ने दिया भी नहीं और कुछ हुआ भी कि कैसे आ गया रिकॉर्डिंग के लिए। मैं वहाँ सुशील कांत जी से मिला, उनके सर नमस्ते, कि हाँ नमस्ते बेटा कैसे आए हो। मैंने सर आपका कांटेक्ट आया है कि मुझे बताओ कविता पाठ मैंने कौन सा दिया हुआ है, जबकि वास्तव में वो कविता पाठ मैंने दिया नहीं था। तो सुशील कांत जी बोले कि बेटा हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया, आपका देखा रिकॉर्ड देखा, आपने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, तो हमने कविता पाठ के नाम से आपको रेडियो स्टेशन में कोई रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है, यदि आप कविताएं लिख सकते हो तो हमें 3-4 कविता लिख के भेजिए, हम उसको करेंगे। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 2 रात लगातार रात को बैठे बैठे कविताएं लिखी मैंने और उनको दिया और उनको पसंद भी आ गया और उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई। वो दिन और आज का दिन, आज भी मैं कविताएं लिखता हूँ और मेरी आपको बता कर रही मुझे खुशी होगी कि मैंने एक मन के जाने कितने कोने काव्य संग्रह निकला हुआ है और एक नया और आने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से, इतने मनीषी लोगों के साथ मेरा संपर्क रहना कि जो मुझे चिकित्सा के अलावा जो मेरे को ये भगवान ने क्वालिटी दी है उसको उन्होंने बहुत ज्यादा तराशा है, और उनका मैं दिल से आज भी आभार करता हूँ इन सब लोगों का।
1: तो ये थे आज के मेहमान श्रोता डॉक्टर दिनेश शर्मा। आपने हमें बताया कि रेडियो के कार्यक्रमों ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया और वर्तमान में भी आप सीख रहे हैं। श्रोताओं, आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेघा की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अगले मंगलवार को इसी समय मिलने के वादे के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का।

0: आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक स्वर था श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम, लेखा के संयोजनकर्ता थे श्री अमित सिंह। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। सुबह के 9 बजने को हैं। आकाशवाणी जयपुर से प्रस्तुत है हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र

तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई।

0: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे। हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
1: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled, data driven and secure digital governance रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बनाया ताकि खिलाड़ी भी परेशान है और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे, ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
3: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की पौध तैयार कर रहा है, जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित रूप से है विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंच गौरव योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खेजड़ी वाटिकाएं बनाई है, जिन जो की चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
0: और अब मौसम।

0: देश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। समय है लोक संगीत का। आज सुनिए सोहनी देवी के गाए लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत। कलाकार थीं सोहनी देवी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT का।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
3: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
3: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
3: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
3: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनी शब्द से निकला है,
2: जी,
3: जिसका अर्थ है धरती या धरती के

0: भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,

0: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
1: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
1: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
1: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे न होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे न होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे न होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
5: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
6: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
7: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
7: कू कू।
9: मेरा भी कुछ यही हाल है।
6: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
7: क्या क्या क्या?
6: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
7: कू, कू।
6: नीचा सब तक सांप सुनाए,

0: सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना काम।
1: यही करो तुम दोनों।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: दम लगा के कू।
4: हईशा।
3: दम लगा के कू।
4: हईशा।
0: गाँव गाँव गाँव शाबाश शाबाश, सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। गाँव गाँव गाँव। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? गाँव गाँव गाँव।
4: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
4: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का का का।
5: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: गवाही। पपी हना पिए
1: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे,
4: हाँ?

0: पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: इसकी यही सजा हो, यही दंड हो।
2: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
3: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
5: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
3: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ,
5: कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए, क्या मैंने गलत कहा?
3: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
3: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहा के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: ये मर गया।
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। धारावाहिक संख्या थी 1317। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। जी हाँ, समय मिला लें। स्टूडियो की घड़ी सुबह के 10 बजा रही है। समय हो चला है फिल्म गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्म लुटेरा से पहला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत को लिखा है। संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज़ में अमित त्रिवेदी के ही संगीत से सजा जयदीप सैनी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है अंधाधुन।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां

0: देखते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। आशीष कौर राहत फतेह अली खान की आवाज में सुनिए अगला गीत। रश्मि विराग ने गीत को लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची का। फिल्म का नाम है सिम्बा।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है एहसास।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत बद्रीनाथ की दुल्हनिया। फिल्म से सुनिए अखिल सचदेवा और मंशल गुजराल की आवाजों में अगला गीत। शब्बीर अहमद ने गीत को बोल दिए हैं, गीत को सुर दिए हैं अखिल सचदेवा ने।

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मोहित चौहान की आवाज में फिल्म जब वी मेट का अगला गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म दम लगा के हईशा से, मोनाली ठाकुर की थी आवाज, वरुण ग्रोवर ने गीत को बोल दिए थे, संगीत था अनु मलिक का। फिल्मी गीतों के सफर में लीजिए सुनिए अगली पेशकश, आवाज शान और श्रेया घोषाल की है, समीर अंजान ने गीत को बोल दिए हैं, साजिद वाजिद का है संगीत, साथ ही आवाज आप शादाब साबरी की सुनेंगे, फिल्म का नाम है जय हो।

ये गीत आपने सुना फिल्म जय हो से। लीजिए सुनिए फिल्म लुका छुपी से अखिल सचदेवा और ध्वनि की आवाज़ में अगला गीत। गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने, अभिजीत वगानी का है संगीत।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में है और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

भीमरोग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर सुरेश वाडेकर का था। भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर आशा भोसले का है, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के हैं, फिल्म का नाम है सरगम।

ताजमहल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के थे। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और शमशाद बेगम के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है नया दौर।

फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फिल्म संगीत आप हमारी इसी सभा में दिन में 12:40 पर सुनेंगे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय

0: सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

दिन में 1:05 पर बहनों के लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा के विषय रहेंगे ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकायों में महिला भागीदारी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल संचयन में महिलाओं की पारंपरिक समझ, साथ ही दादाभाई नारोजी पुण्यतिथि के बारे में रसोई की बातें, ब्यूटी टिप्स और गीत संगीत।

दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युववाणी का प्रसारण होगा। आज की बात का विषय रहेगा शालीनता और सहजता में ही है आनंद। लघु जानकारी आप सुनेंगे नशा मुक्त युवा भारत, सुनने की आदत विकसित करें, क्वांटम कंप्यूटर प्रशांत महासागर के बारे में, साथ ही रोजगार समाचार और गीत संगीत।

संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत एक ही संगीतकार। जिले की चिट्ठी 6:40 पर जयपुर केंद्र से रिले की जाएगी।

संध्या 7 बजे सुनिए ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के प्रथम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य ओवल लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम संध्या 7 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

श्रोताओं, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि संध्या 7 बजे दिल्ली केंद्र से रिले होगा ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के प्रथम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य ओवल लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर

हाजिर आयूं खणी अवां जो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम सभिनीनि ॿुधंदड़नि खे नमीशा खेमनानी जो प्यार भरियो नमस्कार साथियों अॼु महीने जो आख़िरी मंगल आहे ऐं अॼु असां तव्हां जे लाइ खणी आया आहियूं ख़ासि पेशकश आकाशवाणी जा नवे वरीय आकाशवाणीअ जे नवे वरीय प्रोग्राम जे तहत अॼु अवां ॿुधंदा फोन आउट ज़रिए हिकु ॻाल्हि ॿोल ऐं गॾु ई लुत्फ़ माणींदा गीत संगीत जो ऐं चर्चा कंदासीं ख़ासि ॾींहनि जे बारे में साथियों अॼु आहे 30 जून भारत में हर साल 30 जून ते हूल दिवस मल्हायो वेंदो आहे ही ॾींहुं 1855 जी संथाल विद्रोह जी यादि में मल्हायो वेंदो आहे भारत जी आज़ादी जी शुरूआति जन आंदोलन मां हिकु ई आंदोलन झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल ओडिशा जे इलाक़नि में संथाल जनजाति पारां ब्रिटिश शासन जे ख़िलाफ़ माण्हुनि में जागरूकता फैलाई संथाल भारत जे इतिहास में हिकु महत्वपूर्ण पड़ाव आहे छाकाणि ही आंदोलन आम जनजातीय माण्हुनि में पहिरीं बार संगठित रूप सां अंग्रेजी शासन जे ख़िलाफ़ विद्रोह कयो हो अॼु हूल दिवस जो ही ॾींहुं असांखे उन वीर शहीदनि जी यादि ॾियारे थो जंहिं पंहिंजे हक़ ऐं सम्मान ख़ातिर पंहिंजे जीवन जी क़ुर्बानी ॾिनी अचो हाणे प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं था हिन सुहिणे गीत सां

0: साथियों अवां हियर बुधी रहा हुआ आबिदा परवीन के प्रोग्राम के अग्या वधाइंदे अचो कयूं ता गाल बोल आकाशवाणी जे नवे वरियंते आकाशवाणी जा नवे वरिय प्रोग्राम में अवां तवां के हुनन शख्सियतुन सा रूबरू कराइंदा आयूं जेके चंगे वक्त खां आकाशवाणी सा जुड़ियल आहिन हिन में न सिर्फ लेखक ए साहित्यकार हुंदा आहिन पिणा हू शख्सियत भी हुंदी आहे जै आकाशवाणी में पंहिंजी सेवाऊं ॾिनियूं ऐं कम कयो आहे इन ही रिथ में अॼु जेकी भेण असां सां गॾु जुड़ी रही आहे आकाशवाणी में कैजुअल कंपेयर जे रूप में हुननि कमु शुरू कयो हो सुठी कंपेयरिंग सां गॾु रेडियो खां पोइ दूरदर्शन सां भी गॾु जुड़ी ऐं मंच संचालन भी कंदी आहे अॼु भी मंच संचालन लाइ उन्हनि खे घुरायो वेंदो आहे ऐं वक़्त वक़्त ते सिंधी काव्य गोष्ठियुनि में भी हिननि शिरकत कई आहे उन्हनि जो चवणु आहे इन्हनि सभिनि उपलब्धियुनि पुठियां रेडियो ही अहिड़ो एकमात्र ज़रियो रहियो जंहिंजी वजह सां हू अॼु अॻिते खां अॻिती सफली थी त अचो आकाशवाणी जा नवे वर्य प्रोग्राम जे तहत अॼु असां फोन ज़रिए ॻाल्हि ॿोल कंदासीं श्रीमती पूजा चांदवानी जी सां सभिनी खां अॻु पूजा जी तव्हांखे आकाशवाणी जा नवे वर्य पूरा थियण ते खोड़ खोड़ वाधायूं हुजनि
1: तव्हांखे बि खोड़ खोड़ वाधायूं तमामु सुठो थो लॻे त आकाशवाणी एतिरो लंबो सफ़र तय करे वरितो आहे ऐं अॼु बि आकाशवाणी पंहिंजे उन रूप में कमु करे रही आहे
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि चयव आकाशवाणी अॼु बि पंहिंजे उन ई स्वरूप में आहे जीअं पहिरियों ई पाण अॼु हर भारतीय जे दिलनि सां जुड़ी पई आहे मटिजंदे माहौल में बि तव्हां खां इहो ई ॼाणींदसि की तव्हांजे आकाशवाणी जे हिन सफ़र जी शुरूआति कीअं थी
1: ॾिसो अॻे त छा हूंदो हो रेडियो ई हूंदा हुआ पंहिंजे मनोरंजन लाइ या पंहिंजी का ॻाल्हि पतो करणी आहे ख़बरुनि लाइ त नंढे खां असां बि रेडियो ई ॿुधंदा रहिया हुआसीं प्रोग्राम ॿुधंदे ॿुधंदे ई हिकु दफ़ो असांखे प्रोग्राम में ई पतो पियो की कुझु कॉम्पियर जी ज़रूरत आहे ऐं ईअं करे उन्हनि खे फॉर्म फिल करणो आहे त मां बि शुरू खां शौक़ीन हुअसि ऐं मूंखे बि लॻंदो हो की मां बि पंहिंजी आवाज़ किथे ॾियां या इन तरह जा प्रोग्राम कयां जीअं रेडियो में ॿिया था ॻाल्हाइनि मां बि ॻाल्हायां त बसि उहो मौक़ो मूंखे हथ अची वियो ऐं मां फटाफट पंहिंजो उहो फॉर्म फिल कयो उन में ऑडिशन थियणा हुआ ऐं एग्ज़ाम थियणो हो ऐं भॻवान जी दया सां चइजे या पंहिंजी महिनत सां चइजे ॿिन्हिनि ॻाल्हियुनि खे खणी हलूं त उन में मां पास थी वियसि ऐं असांजी वॉइस टेस्ट थी उन खां पोइ असांखे घुरायो हुयो की तव्हां इन कम लाइ उपयुक्त आहियो ऐं इन ॾींहुं अची करे तव्हां असांजा अधिकारी हुआ उन्हनि सां मिलो ईअं मुंहिंजी शुरूआत थी रेडियो हिकु माध्यम हो चइजे मनोरंजन लाइ या असांखे का जानकारी खपे त उन में एतिरा प्रोग्राम थींदा हुआ वक़्तु वक़्त ते माण्हू सुबुह जो जीअं 5:30 थींदा हुआ रेडियो हली वेंदो ऐं रेडियो जी उहा जेकी ट्यून आहे माण्हू जे दिलो दिमाग़ में अॼु बि छायल आहे संकेत ध्वनि चवंदा आहियूं उहो अॼु बि समायल आहे उहा ॿुधंदा आहियूं त मन में हिकु
0: आकाशवाणी में आयो कदम रखियो त तव्हांखे तंहिं महिल कीअं महसूस थियो
1: सचपच मां ॿुधायां त घर खां निकिरण वक़्तु मूंखे ॾाढी ख़ुशी हुई की भई मां वञा थी अॼु रेडियो में प्रोग्राम लाइ ऐं असांखे घुरायो वियो आहे ट्रेनिंग लाइ पर जॾहिं उते पहुतासीं अधिकारियुनि सां मिलियासीं ऐं उन्हनि जॾहिं असांखे माइक हथ में ॾिनो की तव्हांखे ईअं करे ॻाल्हाइणो आहे त हिकु जेकी घबराहट हूंदी आहे न हथ कांपनि पिया ऐं हिकु घबराहट की हाणे भई छा ॻाल्हाइणो आहे कीअं ॻाल्हाईंदासीं ऐं उनखे कीअं चवंदा

0: थी त उहा घबराहट बिल्कुलु मूंखे बि महसूस थी, मां बि नर्वस थी वियसि, जीअं अॼु बि घणेई माइक फोबिया हूंदा आहिनि, माण्हू न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि स्टेज ते हुन ते, त सेम ॻाल्हि मूं में बि उहा थी। जॾहिं की मां तमामु सुठा स्टेज प्रोग्राम कंदी हुअसि ऐं अॼु बि कयां पई, पर आकाशवाणी जो जॾहिं माइक मुंहिंजे साम्हूं आयो, भई सॼी दुनिया ॿुधंदी हुनखे, त जिथे जिथे प्रोग्राम वेंदो आहे त मूंखे तमामु घबराहट थी, नर्वस थी वियसि। पर असांखे इहो ई सम्झायो वियो, सेखारियो वियो कि इहो थींदो, तव्हां पंहिंजो पाण खे सेट कंदा धीरे धीरे, पंहिंजी आवाज़ खे उहे मॉड्यूल कंदा कि तव्हांखे कीअं ॻाल्हाइणो आहे, त बसि उहो धीरे धीरे मज़ो ईंदो वियो।
1: उहो जेको पल आहे उहो हिकु यादगार तौर ते तव्हांजे मानस पटल ते छायजल आहे।
0: बिल्कुलु बिल्कुलु, मां अॼु बि जॾहिं उहो यादि कंदी आहियां न, की भई वञी करे बसि छा आहे, ॻाल्हाइणो ई त आहे, चवणो ई त आहे, करे वठंदासीं, पर न एतिरो सवलो न हो। पर हा, ट्रेनिंग एतिरी सुठी हुई आकाशवाणी जी कि असांखे तमामु उन मां समुझ बि अची वियो जल्दी ऐं सिखी बि वियासीं।
1: तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। त तव्हांजो जेको पहिरियों प्रोग्राम प्रसारित थियो आकाशवाणी तां, हू कहिड़ो, उन जे बारे में थोरो ॿुधायो।
0: सिंधी प्रोग्राम में छाकाणि त मूं ऑडिशन ॾिनो हो ऐं सिंधी कॉम्पेयर लाइ ई मां पास थी वियसि, त सभ खां पहिरियों प्रोग्राम जेको मूंखे मिलियो हो कि सिंधी जेके आहिनि पंहिंजा गीत कलाम ॿुधाइणा आहिनि जे लाइ तव्हांखे अनाउंसमेंट करणी आहे, त उहो मुंहिंजो पहिरियों प्रोग्राम हो ऐं मूंखे चयो वियो हो त तव्हां अलॻि अलॻि तरीक़े जा गीत कलाम ऐं भॼन इहे छाटियो, त उहे असां उन मां छाटे करे ऐं उन जे लाइ पहिरीं असां पूरी एंकरिंग लिखीसीं कि कीअं कीअं असांखे छा छा चवणो आहे, त उहो मुंहिंजो पहिरियों प्रोग्राम हो। ऐं छाकाणि त असांखे लिखायो हो, लिखी करे असांखे चङी तरह पढ़णो हो, त अगरि किथे असांखां ग़लती बि थिए पई न लिखण खां पोइ बि, हाणे त माण्हू बिल्कुलु लाइव करे थो वञे, त लिखण खां पोइ बि असांखां ग़लती थिए पई त असांखे रोके करे वापसि चवनि पिया इनखे वापसि चओ। त हिकु जेको पहिरियों प्रोग्राम हो उनखे ठाहिण में मूंखे ॿ ॾींहं लॻी विया हुआ।
1: हा, त जीअं की तव्हांखे ॿ ॾींहं लॻा हुन प्रोग्राम खे ठाहिण में, त जेकी रिकॉर्डिंग पहिरियों थी ऐं अॼोके वक़्त में जेकी रिकॉर्डिंग थींदी आहे, त उन जे वक़्त में अॼोके वक़्त में केतिरो बदिलाउ महसूस पिया कयो?
0: फ़र्क़ु इहो अची वियो आहे की अॼु सभु कुझु कंप्यूटर ते तव्हां रिकॉर्ड कयो था, उन वक़्तु कैप्सूल्स हूंदा हुआ, उन कैप्सूल्स ते रिकॉर्डिंग थींदी हुई। असां त उहे जीअं स्टूडियो में वेही करे माइक जे साम्हूं ॻाल्हाइबो आहे उहे ॻाल्हाईंदा हुआसीं, पर उहे जेके वॾा वॾा कैप्सूल हूंदा हुआ उन ते रिकॉर्ड थींदी हुई, त उनखे छा आहे विच में रोके करे वापसि सां स्टार्ट करण में दिक़त ईंदी हुई, त उहे चवंदा हुआ कि जेतिरो थी सघे तव्हां पंज छह दफ़ा रीडिंग्स कयो, सुठी तरह रीडिंग कयो, जीअं तव्हांखे रुकणो न पए,
1: हिकु भेरे में ही सही सही पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन ॾियणी पवंदी हूंदी।
0: हा, बसि कंप्यूटर में त अॼु असांखे ॾिसण में थो अची वञे, उन वक़्तु त ॾिसण में न ईंदो हो, असांखे अंदाज़ सां कटणो पवंदो हो, भई इते हाणे एतिरी शइ खे कटे करे वापसि लॻाइणो आहे, जोड़णो आहे, त उहो सभु बदिलाउ त ॾिसो वक़्त जे अनुसार आयो आहे, त उन में बि मज़ो ईंदो हो ऐं असां उनखे बि तमामु सुठे नमूने एडिट करे प्रोग्राम पेश कंदा हुआसीं।
1: तव्हां दूरदर्शन सां बि जुड़ियल आहियो, त दूरदर्शन ते जीअं तव्हां प्रोग्राम ॾींदा आहियो, त उनजी शुरूआति तव्हांजी कीअं थी?
0: इहो असां लाइ ॾाढी फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे की जॾहिं असां रेडियो सां जुड़ियासीं उन खां पोइ असां दूरदर्शन सां बि जुड़ी सघियासीं। जीअं असां रेडियो सां न जुड़ियल हुजूं हा त शायदि असां दूरदर्शन सां बि न जुड़ूं हा। जीअं जीअं मां रेडियो में अॻियां वधंदी वियसि, मुंहिंजा प्रोग्राम्स वधीक माण्हुनि खे वणंदा विया, मुंहिंजो आवाज़ वणंदो वियो, त कंहिं मुंहिंजो आवाज़ रेडियो ते ॿुधो हो, उन्हनि मूंखां पुछियो त भई तव्हां रेडियो ते प्रोग्राम कंदा आहियो, छा दूरदर्शन ते करे सघंदव ईअं? त मुंहिंजो हा, कोशिशि कंदसि, छो त रेडियो ते बि असां जॾहिं आयासीं त नवां ई हुआसीं, कोशिशि कईसीं त हेसि ताईं पहुता आहियूं, त हाणे दूरदर्शन ते बि कोशिशि कंदासीं, त इन तरीक़े सां उन्हनि मूंखे उते अपॉइंट कयो हिकु प्रोग्राम लाइ ऐं उहो प्रोग्राम बि सुठो थी वियो, त बसि पोइ चवंदा आहिनि न, तार सां तार जुड़ी वई ऐं चेन हलंदी वई।
1: अॼु बि तव्हांजो ई सफ़र क़ाइमु आहे, तव्हां रेडियो सां ऐं दूरदर्शन सां ॿिन्ही सां गॾु जुड़ी रहिया आहियो। हिंदी ऐं सिंधी नाटक बि घणेई आकाशवाणी तां प्रसारित थिया आहिनि, त छा उन में तव्हां कॾहिं अदाकारी कई आहे? उन अदाकारी अगरि कई आहे त तव्हां उन सां कीअं जुड़िया?
0: हा नमीशा, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं सिंधी जे अलावा त रेडियो ते सॼो ॾींहुं अलॻि अलॻि तरीक़े जा प्रोग्राम ईंदा ई आहिनि ऐं तॾहिं बि ईंदा हुआ, इन प्रोग्रामनि जे ज़रिए ई उते नाटक बि थींदा आहिनि।

0: तमामु सुठा उहे प्रसारित बि थींदा आहिनि, रिकॉर्ड बि थींदा आहिनि. त मां उते जॾहिं ऑडिशन थियणा हुआ हिंदी नाटक जा, तॾहिं मूं बि फॉर्म भरियो ऐं मां पास थी वियमि. ऐं मां घणेई हिंदी नाटक बि कया ऐं सिंधी नाटक बि मूं हिते कया आहिनि तमामु घणा. जेको बि प्रोग्राम आहे उनखे पेश करण जो अंदाज़ अलॻि हूंदो आहे. त उन्हनि खे जॾहिं असां ॿुधंदा आहियूं त असांखे उन्हनि मां बि घणो ई कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे कि न पाण बि ईअं करे इन तरीक़े सां ॻाल्हाए था सघूं या इन प्रोग्राम खे ईअं करे पेश था करे सघूं. त आकाशवाणी त एतिरो सुठो माध्यम आहे सिखण जो. मां त इहो ई चवंदसि हर कंहिंखे की उन्हनि खे रेडियो माण्हुनि खे ज़रूरु ॿुधणु खपे जेको कुझु अॻियां हिन फील्ड में करणु था चाहिनि.
1: त अॼु नई टई जी ॻाल्हि कयूं त पंहिंजे सिंधी प्रोग्रामनि सां या सिंधी चइजे सिंधी भाषा सां पंहिंजी संस्कृति सां नई टई खे कीअं जोड़िजे की हू पंहिंजी भाषा सां गॾु रेडियो सां बि गॾु जुड़िया पिया हुजनि.
0: ॾिसो भाषा सां त पाण खे ॿारनि खे जोड़णो ई पवंदो. जॾहिं ॿार भाषा सिखंदा, ॿोली सिखंदा, सम्झंदा, तॾहिं त हू प्रोग्राम लाइ आकाशवाणी ते ईंदा, जॾहिं उन्हनि खे ॻाल्हाइण ईंदो. त उहा शुरूआत असांखे ई करणी पवंदी. असां नंढे खां ई ॿारनि खे उहा ॿोली सेखारियूं, उन्हनि खे सम्झायूं, उन्हनि खां जेके नंढा नंढा बैत आहिनि उहे ॿुधूं, उन्हनि खे सेखारियूं, ऐं पोइ उन्हनि खे चऊं की ॾिसो तव्हांखे रेडियो ते हलणो आहे, तव्हांजो प्रोग्राम ईंदो, तव्हांखे बि ॿुधण में ईंदी तव्हांजी आवाज़. त इहा नंढे खां शुरूआत कंदासीं त उहे जुड़ंदा ई. ऐं हाणे त घणे बार जुड़ी बि विया आहिनि छो त सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे. हर कोई पंहिंजा प्रोग्राम्स ॿुधण थो चाहे, ॾिसण थो चाहे. अॼु त आकाशवाणी ई आहे जिते ॿारनि जा प्रोग्राम अचनि था. अॼुकल्ह माण्हू रील्स बि ठाहिनि था, त उन लाइ बि ॿारनि खे हिकु प्लेटफॉर्म मिले थो.
1: त हाणे चाहींदसि की तव्हां हलंदे हलंदे असांजे श्रोताउनि खे छा संदेश ॾियणु चाहींदा?
0: मां त रेडियो सां जुड़ियल आहियां, दूरदर्शन सां जुड़ियल आहियां. मां उन्हनि जी मुरीद आहियां ऐं रहंदसि. मां त इहो ई चाहींदसि की जेके बि असांजा साथी आहिनि रेडियो ॿुधंदा आहिनि, उहे रेडियो ॿुधंदा रहनि, पिण पंहिंजे दोस्तनि यारनि वॾनि बुज़ुर्गनि खे बि जोड़े रखनि की जेके बि प्रोग्राम रेडियो ते ईंदा आहिनि उन्हनि जो मज़ो हिकु अलॻि ई हूंदो आहे. भले सोशल मीडिया जा बि ॿुधनि, पर रेडियो जी आवाज़ अॼु बि रेडियो जी आवाज़ आहे. अॼुकल्ह त ईमेल जो ज़मानो आहे. मेल करे उन्हनि खे लिखनि, उन में कुझु सुधार था चाहिनि या उन्हनि खे प्रोग्राम वणियो आहे त उन्हनि लाइ उन्हनि खे वाधायूं लिखनि.
1: पूजा जी, तव्हां फोन ज़रिए असां सां गॾु जुड़िया, तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद. अवां हींअर ॿुधी रहिया हुआ आकाशवाणी जे नवे वरियन ते पूजा चांदवानी सां कयल ॻाल्हि ॿोल. साथियो, तव्हांखे ॿुधायां, सुभाणे आहे 1 जुलाई, ऐं 1 जुलाई ते असांजे सिंधी गायक श्री हाशू शहदादपुरी जो जनम ॾींहुं थींदो आहे. उन्हनि जो जनम 1 जुलाई 1936 ते दीवान सिंधी परिवार में थियो. श्री हाशू शहदादपुरी सिंध समुदाय जा सभिनी खां सम्मानित मशहूर गायकनि मां हिकु आहिनि. भॼन, सूफ़ी संगीत, सूफ़ी कलाम जहिड़े घणेई प्रसिद्ध कवियुनि ऐं लेखकनि जी रचनाउनि ते हुननि पंहिंजी आवाज़ ॾिनी आहे. सिंधी गायकी में उन्हनि खे जगमोहन सुरसागर जहिड़े हिंदी फिल्म गायक जेतिरो मान मिलियो आहे. हिननि जी गायकी में मिठास ऐं आध्यात्म जी झलक बि हूंदी आहे. हाशू शहदादपुरी अखिल भारतीय रेडियो में भी कलाकार रहिया आहिनि. ही गांधीधाम जी प्रसिद्ध सिंधी गायिका श्रीमती सपना राय सिंघानी जा पिता साहब आहिनि. उन्हनि जा कुझु मशहूर गीत आहिनि, राज़ी थी मिलण ॾे राणा, सखी जा बाजल, मेरी आहे मेरी मुंहिंजी लोई, शुक्र मुंहिंजा साईं. उन्हनि जी आवाज़ ऐं गायकी अॼु बि सिंधी संस्कृति खे ज़िंदा रखी वेठी आहे. तव्हांखे ॿुधायां, अॼु 30 जून हर साल भारत में दादा भाई नौरोजी जी पुण्यतिथि जी यादि में मल्हायो वेंदो आहे, जे आंदोलन जी शुरूआती महान नेताउनि मां हिकु हुआ. हिननि जो जनम 4 सितंबर 1825 में मुंबई में थियो हो. ही हिकु महान वीचारक, समाज सुधारक, शिक्षक ऐं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जी शुरूआती नेताउनि में शामिल हुआ. दादा भाई नौरोजी जी भारत जी लड़ाई में अहम भूमिका रही. पहिरों भारतीय हुआ जो ब्रिटिश संसद में सदस्य ठही भारत जी आवाज़ ठही. उन्हनि जे वीचार ऐं भाषण सां दुनिया खे भारत जी हालत जी सही जानकारी मिलंदी हुई. उन्हनि जो मशहूर सिद्धांत हो ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी सिद्धांत. उन्हनि जे नेतृत्व में भारतीय माण्हुनि में राजनीतिक जागरूकता वधी ऐं आज़ादी जी मांग मज़बूत थी. ऐं उन्हनि जा वीचार अॼु बि भारत जी आर्थिक ऐं राजनीतिक समुझ में तमामु महत्वपूर्ण मञी वेंदी हुआ. इन्हनि जे जीवन सां असां सभिनि खे प्रेरणा वठणु खपे कि महिनत ऐं सच्चाई सां हर लक्ष्य हासिल थी सघे थो. ऐं साथियो, सुभाणे आहे 1 जुलाई. 1 जुलाई ते ईंदो आहे डॉक्टर्स डे ऐं सीए डे. भारत में हर

1 जुलाई ते राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं मशहूर डॉक्टर, शिक्षाविद ऐं पश्चिम बंगाल जा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी याद में मल्हायो वेंदो आहे। उन्हनि जो जन्म ऐं निधन ॿई 1 जुलाई ते ही थियो हो। इन कारण ही ॾींहुं ख़ासि अहमियत रखे थो। इन करे भारत सरकार पारां 1991 में हिन ॾींहुं खे राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे घोषित कयो वियो। डॉक्टर्स जो कमु तमामु ज़िमेदारी वारो हूंदो आहे, छो की उन्हनि खे हर वक़्तु तयारु रहणो पवंदो आहे। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे न सिर्फ़ हिकु औपचारिक ॾींहुं आहे, पिण हिन ॾींहुं डॉक्टरनि जी महिनत, सेवा ऐं बलिदान खे यादि करणु ऐं उन जे प्रति आभार व्यक्त करण जो ई ॾींहुं आहे। ऐं राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे असांखे इहो यादि ॾियारींदो आहे की डॉक्टर सिर्फ़ हिकु पेशो न आहे, पिण इंसानियत जो रक्षक आहे। उन्हनि जो योगदान अनमोल आहे ऐं समाज उन जे बिना अधूरो आहे। इन जे अलावा अॼु आहे चार्टेड अकाउंटेंट डे। भारत में हर साल 1 जुलाई ते राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट डे भी मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI जी स्थापना जी यादि में मल्हायो वेंदो आहे। 1949 में क़ाइमु कयो वियो हो ऐं इन ॾींहं जो मक़सदु देश में CA जे पेशे जी अहमियत ऐं हुन जे योगदान खे उजागर करणो आहे। अॼु जे दौर में चार्टेड अकाउंटेंट जो रोल बि तमामु अहम थी वियो आहे, छाकाणि बिज़नेस सिस्टम तेज़ी सां बदिलजी रहियो आहे। टैक्स कानून, डिजिटल अकाउंटिंग ऐं ग्लोबल मार्केट में CA जी एक्सपर्टीज़ तमामु ज़रूरी थी वई आहे। इन करे ही बि देश जी अर्थव्यवस्था खे मज़बूत ठाहिण वारा हिकु अहम स्तंभ आहिनि ऐं हिननि जो योगदान बिना मज़बूत आर्थिक सिस्टम संभव कान्हे। हाणे मोटियूं था गीत संगीत जी तरफ़। अचो मज़ो माणियूं था हिन सुहिणे गीत जो।

सिंधड़ियों ते सदके फिल्म जो ही गीत अवां ही यार बुधी रहा हुआ इन्हें ही गीत सागर असां जे हिने प्रोग्राम जो वक्त भी इत्ते ही पूरो तो थे वरी अवां सां गज्जानी थींदी ईंदड़ विस्पत ते डीह जो बारे लगी 10 मिंटन ते तेसी ताई नमीशा खेमनानी के दींदा मोकल नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

लता मंगेशकर के स्वर में हंसते जख्म फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर के स्वर में है और फिल्म का नाम है जिंदगी और मौत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म हाथ की सफाई के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
1: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर तीन पाइपलाइन से पानी जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सौगातें राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राइजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाब देह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम वीबीजी रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम वीबीजी रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1,03,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बालोतरा के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रिफाइनरी परिसर को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रिफाइनरी प्रबंधन के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की

0: समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल एसओजी ने फर्जी एफएमएजी सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने कार्यक्रम सुनेंगी घर आंगन। आज की प्रस्तुति सुरभि बोहरा और मनोज कंवर खंगारोद की है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहनें कार्यक्रम सुनेंगी घर आंगन। आज की प्रस्तुति सुरभि बोहरा और मनोज कंवर खंगारोद की है।

0: घर आंगन सुनने वाली मारी सगली बहना ने आपरी सखी मनोज खंगारोत
1: और सुरभि बोहरारा घना घना राम राम सा।
0: तो बहना टाबरा रे सागे सागे आप सबरी दिनचर्या पटरी पे आगे हो सी, क्योंकि अब टाबरा रा स्कूल जो शुरू हो गया है। अभी पिछला 1.5-2 महीना से तो लगभग आपरी सुबह भी थोड़ी धीमी धीमी होती हो सी, आराम से उठनो, सुकून से चाय रो लुफ्त उठाणो, क्योंकि टाबरा ने स्कूल भेजनो, टिफिन ए सब तो अभी हा को नहीं हा।
1: बिल्कुल मनोज, और अपारी जी की बहना पीवर गयोड़ी ही बारी तो काई तो सुबह हुए और काई शाम हुए, हर टाइम भी आने सुकून ही सुकून, मारो प्यार भोजायो रोमान। मैं तो अपारा खुदरा जी का कई दिन हुए, थोड़ा दिन हुए बे अपा टाबर पड़े के रूप में जीला अपने बचपन ने
0: बचपन जी रहा है आपा। बस बिल्कुल। बस भी मने लगे थे तो पाछा पियर ही पूग गया हो, नहीं आगे जब आपारी छुट्टियां उसी टाबरा री तो फिर चला जाया। अब आर जरूरत है देखो टाबरा ने फिर सु स्कूल पढ़ाई लिखाई सु जोड़ने रो, घर परिवार संभालने रो, और अपनी जो बिना कामकाजी है बाने भी तो अपनो कामकाज फिर सु संभालनो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सागे सागे देखो मनोरंजन रे खातिर तो बिना अपनो कार्यक्रम घर आंगन है ही, तो जठे आपा देखो खूब सारी तो बातें करा हाँ, और मतलब बढ़िया बढ़िया आपा गीतड़ला सुना हाँ। तो जब बात गीतड़ला ही हो रही है तो मने लगे कि सबसे पहला आपा ने बहना ने खूबसूरत सो गीतड़लो सुना देना चाहिए।
1: बिल्कुल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बिना राष्ट्र निर्माण री नींव में घना लोग अपना जीवन ने समर्पित करया, वारा समर्पण वारा देश प्रेम रो ही नतीजो हो आज रो खुशहाल भारत। एड़ा महान व्यक्तित्व कदे ही भुलाया नहीं जा सके।
2: और बिना देश री ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐड़ा महान व्यक्तित्व ही राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी री पुण्यतिथि पर बाने आज अपन सगला मिल नमन करा, श्रद्धापूर्वक नमन करा हाँ और बियाने याद करा हाँ।
1: दादा भाई नौरोजी ने भारत रा ग्रीन ऑल मैन कहो जाओ। बिना सबसे पहले बारे द्वारा ही अंग्रेजी शासन द्वारा भारत रा आर्थिक शोषण ने धन निष्कासन सिद्धांत रे माध्यम से स्पष्ट करो गयो। बारे द्वारा बतायो गयो कि किन तरह से भारत री संपत्ति लगातार ब्रिटेन भेजी जा रही है, जिनसे जो देश है वो निर्धन बनतो चलो जा रहे हो।
2: बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आंदोलन रा अग्रणी नेता में से एक है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रा 3 बार अध्यक्ष रिया हा। वे ब्रिटेन री संसद में चुनिया जाने वाला पहला भारतीय हा। ब्यारे भारतीय सेना में भारतीयों रे अधिकारों रे बारे में शिक्षा व स्वशासन री आवाज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाई गई है।
1: बिना आज वाली पुण्यतिथि पर बारे राष्ट्र प्रेम, दूरदर्शिता और जो जनसेवारी बारी भावना ही पिने नमन करा हाँ और बारे आदर्शा शू प्रेरणा लेने रो आपा सब संकल्प करा हाँ।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित

0: ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड

0: सी तो मैं स्वतः ही अच्छा तरीका से पानी रो उपयोग करना सीख जासी। पानी री जो जो क्या करे ना कीमत है बाबा ने समय रहते समझ आ जासी।
1: और इरे वास्ते ब्यारी माए जी की है बे ही सहयोग कर सके टाबरा ने समझावन वास्ते। तो आज जलवायु परिवर्तन हुयो, घटता जल स्तर है, बिया चिंता रा घणा ही विषय है। पर इस समय में महिलाओं रो लोक ज्ञान आधुनिक विज्ञान सागे जुड़न री जरूरत है ताकि बिया ने नयो सु नयो ज्ञान मिलता रहे, बे जागरूक बने, बे पानी री बचत करे,
0: नया तरीका से बचत करने रो कोशिश करे। तो बिना देखो ई चर्चा रो एक ही मतलब उद्देश्य हो कि आपा सब मिल पानी ने जो संचय है वो करा ताकि आपने आने वाली पीढ़ी ने पानी री जो किल्लत है बा आपा नहीं देर जावा बाने
1: महसूस नहीं हो सके
0: तो चलो सुरभि इतनी बढ़िया जानकारी रे सागे सागे अब आपा बहना ने एक बढ़िया सो गीतड़ लो भी सुना दिया।
1: बिल्कुल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बना भारत रो असली विकास गांवां से जुड़ियोड़ो है। गांव रा विकास में और देखो गांव रा विकास में महिलाओं रो योगदान सदियां से रियो है, पर आज पंचायती राज व्यवस्था ने उनने नेतृत्व करवारो अवसर भी महिलाओं ने मिलो है। स्थानीय निकायों में महिलाओं री भागीदारी लोकतंत्र

0: स्वातंत्र्याने मजबूत करे है आणि समाज में समानता रो संदेश भी दे रही है।
1: बिल्कुल मनोज बहन, 73वें संविधान संशोधन बाद पंचायती राज में महिलाओं ने आरक्षण मिल्यो। इसु घणी महिलाएं सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अने पंचायत समिति री सदस्य बन रही है। वे गांव री समस्या ने समझे, गांव में कई प्रकार री समस्या हुए जिया लाइट री, पानी री, पढ़ाई री या कई तरीके री जी कई सुविधाएं अपने शहर में मिलिया करे पर नहीं हुआ करे, तो वे बीरी समस्या ने समझ रही है और बीरे ऊपर कार्य भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है।
0: बिल्कुल, और वे बहुत हद तक बिना सफल भी हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वे उन समस्या ने जमीनी स्तर से देख रही है, खुद बाने महसूस कर पा रही है, खुद उन माहौल में रह रहे हैं, तो बाने पतो है कि गांव रे मायने कौन सी समस्या है जो ज्यादा गंभीर है, जिन पे ध्यान देना चाहिए। आप देखो महिलावां जो पीना रो पानी है, गांव रे जो स्वच्छता री जो जिम्मेदारी है, शिक्षा री आप बात कर लो कि गांव रे मायने अगर जिया जो बालिका शिक्षा है बीन रे मायने कमी है, तो जो अगर पंचायती राज संस्था से महिला जुड़े रही है और अगर वे इन तरीके री कोई कमी देख रही है तो वे इन्हें सुधारने की कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी है, पोषण स्वास्थ्य सेवा है, बालिका शिक्षा है, महिला सुरक्षा है, पर्यावरण संरक्षण है, और ये सब स्वयं सहायता समूह से जुड़नो बने बढ़ावो देनो, मतलब बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वे पंचायत समिति जो मतलब जितना भी जो स्थानीय निकाय है वहां से जुड़ और निभा रही है।
1: बिल्कुल, इसे में कही महिलाओं री भागीदारी होनी बहुत जरूरी हो
0: सही है।
1: और इसे में महिलाओं री भागीदारी सु बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, अशिक्षा और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी जागरूकता फैल रही है।
0: हाँ।
1: आज घनी महिलाएं जिकी अब सरकारी योजना रो लाभ प्राप्त कर रही और गांव रे हर कोने पर बिने पहुंचा रही है।
0: सही बात है, क्योंकि वे खुद ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय निकाय है बांसी जुड़ेड़ी जो महिला है, अब जो भी सरकार रे द्वारा नई नई योजना चलाई जावे तो बारी जानकारी सबसे पहला वहां तक पहुंचे है। और जब एक स्थानीय निकाय में कार्यरत जो अपनी बहना है वहां तक जब जानकारी पहुंचे है तो जो जानकारी उन योजना की सबसे ज्यादा जरूरत जिन्हें है उन्हें भी वे जान रहे हैं बहुत अच्छी से। क्यों? क्योंकि वे उन्हीं समाज रे मायने रह रहे, तो इन रे मायने जो योजना है बान को लाभ लोगों तक पहुंचे वो भी बहुत अच्छा तरीका से सुनिश्चित हो रहे हैं।
1: पहले कहीं कि अपरी जी की गांव री महिलावां ही बियाने एक घूंघट में रखना पड़ता और वे कहीं पिछड़ी साबित हो रही थी, तो बियाने आगे लावण वास्तर कई प्रकार की योजनाएं भी अपरी सरकार जी की है वे चलाया करे, तो महिलाओं ने अशिक्षा, रूढ़िवादी सोच, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दबाव जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि एक महिला केवल आपरे घर में ही सीमित कोनी, वे बैठे से बाहर निकल रही है, कई प्रकार की योजनाओं में शामिल हो रही है और कई समस्याओं ने भी समझ रही है जी कि टाबरा री समस्या जी की है बे अपनी महिला ही ज्यादा समझ सके, पुरुष भी समझ सके, लेकिन महिलाओं रो जुड़ाव जी को है बे टाबरा से बहुत ज्यादा हुआ करे। तो बियारे अगर शिक्षा री समस्या आ रही है, बियारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो बे स्थानीय निकाय में महिला री भागीदारी सु धीरे धीरे कम होती जा रही है।
0: सही कह रहे हो, और राजस्थान में देखो महिलाओं ने जो स्थानीय निकाय में 50% रो जो आरक्षण मिलो नी सुरभि बहन, इन कदम से जो महिलाओं रो नेतृत्व करनो हो बारो बहुत अवसर बने मिल्यो, बारो आत्मविश्वास बढ़ो और विकास संबंधी जो फैसला हा बामे बाकी भागीदारी भी मजबूत हुई है कुनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी थे मनोज बहन, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक दबाव जैसी कई कठिनाइयां तो बयाने हुई, लेकिन महिलाओं री सक्रिय भागीदारी बिना गांव रे संपूर्ण विकास संभव कोनी है। यानी अगर महिलाएं जब तक जागरूक कोनी हुए, कोई सक्रिय भागीदारी नहीं दे रही है, तो गांव रो विकास कोनी होसी। जब महिलाएं निर्णय लेवन में बराबरी सु भाग लेसी तद जार लोकतंत्र मजबूत होसी, और अपना भारत रो तंत्र जी को है वो लोकतंत्र है, यानी जनता जी की है वे खुद आपरे नेताओं ने चुन रही है, तो समाज प्रगतिशील बनसी और गांव जी को है वे खुशहाल बनसी।
0: तो बिना आओ लोकतंत्र ने मजबूत बनावने खातिर महिलावां री सक्रिय भागीदारी ने बढ़ावो देवा। जब महिला आगे बढ़सी तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़सी, है कोनी सुरभि?
1: बिल्कुल, और क्या करे नी गांधी जी रो एक कथन भी हो जी की मनोज बहन अपने बतावने जा रही थी कि
0: क्या करें ने कि भारत देश जो है गांव रे मायने बसे। हाँ। तो देखो गांव रो विकास तो बहुत जरूरी है, और जब गांव रो विकास चाहिए तो जो जितनी आबादी है भी रो, मतलब चाहे पुरुष और चाहे महिला हो, बराबर बारो जो योगदान इन रे मायने चाहिए, है कोनी?
1: कितनी फूटरी बात बताई मनोज जी।
0: तो चलो फिर अब बढ़िया सो गीत भी बनाने सुना दें।
1: बिल्कुल।

0: तो बिना तावड़ो तो देखो मंदो को नहीं पड़े, क्योंकि वो तो समय ही रे चमकने रो इरो तपने रो है।
1: बिल्कुल।
0: गर्मी भी मंदी को नहीं पड़े क्योंकि मौसम गर्मी रो है। तो कोई बात को नहीं, ए आपरी जगह है, बस आप अपनो ध्यान रखो, है को नहीं सुरभी?
1: बिल्कुल, आपरे शरीर ने ढककर रखो, जब भी बाहर निकलो तो एक रुमाल या फिर कोई वस्त्र जिको है बे आपरे सिर पर रखकर आप निकल सको हो।
0: सही बात है। साथ ही साथ देखो हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहो, और अपना मतलब दिन भर रे मायने कोशिश करो कि आप खूब पेय पदार्थ जी अरे आपने कहीं कमी है, छाछ है, नींबू पानी है, लस्सी है, एक खूब पीता रहो। और बिना एक सबसे जरूरी चीज कि आपनों तो पूरा ध्यान रख पा रहे हैं, लेकिन जो बेजुबान पक्षी है, जो जानवर है, वे कदे ही अपन आर को नहीं कहे कि बाने तिस लगी है, बाने भूख लगी है। तो आप कोशिश करो पक्षियां खातर घर रे बारे परिंडा भर रखो, अगर घर रे बारे कुंडियां रखेड़ी है गाय भैंस के लिए तो बिनर मायने पानी आप भरो, वहां खातर दाने री आप व्यवस्था करो, है को नहीं सुरभी?
1: बिल्कुल, ताकि गर्मी में बे भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि अगर अब मनक परेशान हो रहा है तो बे उड़न वाला पक्षी भी परेशान हो रहा है उसी।
0: सही कह रहे हो। तो बेना अब देखो जो स्टूडियो री घड़ी है बा अबार माने लगातार इशारो कर रही है कि बेना सु सीख लेने रो समय हो गए। तो अबार के लिए आपरी सखी मनोज खंगारोत
1: और सुरभि बोहरा
0: न देव सीख, राम राम सा,
1: राम राम सा।

अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर आंगन। आज की प्रस्तुति श्रीमती सुरभि बोहरा और श्रीमती मनोज कंवर खंगारोद की थी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1,021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली

0: अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में अभी आपने बात एक रात की इस फिल्म का गीत सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में है। फिल्म का नाम है राजा रानी।

आशा भोसले के स्वर में अभी आपने साहब बीबी और गुलाम फिल्म का ये गीत सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप एफएम पर सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अगली सभा में संध्या 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे ये प्रोग्राम DRM चैनल 1386 किलो हर्ट्स पर भी उपलब्ध थे। इस सभा को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। संध्या के 5 बजने को हैं, हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में UPI के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने UPI की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है।

0: जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चार दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग चार दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं गौतम गौड़ और सौम्या पांडेय।

0: धैर्य की राह पर जो मुस्कुराते हुए चलते हैं, हर मुश्किल समय में वह आगे बढ़ जाते हैं। जो जीवन को सहज भाव से अपनाते हैं, वही हर पल में सच्चा आनंद पा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौतम।
1: और मैं हूं सौम्या। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यह विषय केवल हमारे व्यवहार से संबंधित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे मन की शांति से भी जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है सहनशीलता, और सहजता में ही है आनंद।
0: दोस्तों, अगर हम अपने आज के जीवन को देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करने में लगा हुआ है। कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर मेहनत कर रहा है, कोई अपने कैरियर में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो कोई अपने परिवार और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने की इच्छा जीवन को नई दिशा देती है, लेकिन कई बार इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने

0: मन की शांति और जीवन को छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल गौतम, आज के समय में हर कोई जल्दी में दिखाई देता है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत परिणाम और तुरंत ही समाधान। लेकिन जीवन की हर चीज अपने समय के अनुसार आगे बढ़ती है। जिस तरह एक पौधे को बड़ा होने के लिए समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी अच्छी चीज़ों के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है।
0: सही कहा सौम्या, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी परिस्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं। अगर कहीं जाने में थोड़ी देर हो जाए, किसी काम का परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार ना आए, या कोई व्यक्ति हमारी सोच से अलग बात कह दे, तो हम परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे मन की शांति को प्रभावित करने लगती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ बातें हमारे अनुसार होंगी तो कुछ बातें हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। यही वह जगह है जहाँ सहनशीलता हमारी मदद करती है। सहनशीलता हमें सिखाती है कि हम

0: हो जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे मन की शांति को प्रभावित करने लगती है दोस्तों।
1: बिल्कुल दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ बातें हमारे अनुसार होंगी तो कुछ बातें हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। यही वह जगह है जहाँ सहनशीलता हमारी मदद करती है। सहनशीलता हमें सिखाती है कि हम परिस्थितियों को शांत मन से समझें और बिना जल्दबाजी के सही निर्णय लें।
0: और दोस्तों, सहनशीलता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या हर बात को चुपचाप सहते रहें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, दूसरों की बातों को सुनें और किसी भी परिस्थिति में अपने व्यवहार को संतुलित बनाए रखें।
1: वही सहजता का अर्थ भी है, जीवन को सरल और स्वाभाविक तरीके से जीना। आज कई बार हम अपने जीवन को इतना जटिल बना लेते हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी हमें दिखाई नहीं देती। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान के सुंदर पलों को भी भूल जाते हैं।
0: और दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हुए भी हमेशा खुश दिखाई देते हैं। उनके पास शायद हर सुविधा न हो, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और मन में शांति जरूर होती है। वहीं कुछ लोग सुविधाओं से भरा जीवन होने के बावजूद भी हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं। इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और हमारा नजरिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल, खुशी केवल चीजों से नहीं मिलती गौतम, बल्कि हमारे अंदर की भावना से जुड़ी होती है। अगर हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाएं, तो सामान्य दिन भी खास बन सकता है। सुबह की ताज़ी हवा, परिवार के साथ बिताया हुआ समय, किसी की मदद करने का अवसर, ये छोटी बातें ही जीवन में बड़ा आनंद लेकर आती हैं।
0: सौम्या, इसी विषय से जुड़ी एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक लड़की थी जिसका नाम था श्रुति। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर काम पूरी मेहनत से और लगन से करती थी। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक सोचने लगती थी। अगर परीक्षा में उसके अंक उम्मीद से थोड़े कम आ जाते तो वह कई दिनों तक परेशान रहती। अगर कोई दोस्त उसकी बात से असहमत नहीं होता या फिर असहमत रहता है तो वह इसे अपने मन पर ले लेती थी। धीरे धीरे वह छोटी छोटी परिस्थितियों के कारण चिंता महसूस करने लगी।
1: एक दिन उसकी दादी ने उसे उदास देखा। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा आज तुम इतनी शांत क्यों हो? तो श्रुति ने कहा, दादी मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार चीज़ें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को कैसे खुश रखूं।
0: और दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी जब अपने रास्ते में पत्थर देखती है तो उसने उससे लड़ती नहीं है, वह अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ जाती है।
1: श्रुति ने कहा, हाँ दादी, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों से जल्दी परेशान हो जाती हूँ। दादी ने कहा, यही तो सीखने वाली बात है, जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी, लेकिन अगर हम परिस्थितियों को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करना सीख लें तो मुश्किल समय भी हमें मजबूत बना देता है।
0: तो दोस्तों, दादी की यह बात श्रुति के मन में बैठ गई। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। उसने समझा कि हर छोटी बात को चिंता का कारण बनाने के बजाय उससे सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा और दूसरों के विचारों को समझना शुरू किया। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगे। अब वह पहले से अधिक शांत, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी।
1: तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन समस्याओं को हम किस तरह देखते हैं ये हमारे हाथ में होता है। सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ हम कठिन परिस्थितियों को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसके माध्यम से हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलती है और हम दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से करने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी चुनौतियाँ और अपनी कहानियाँ होती हैं।
0: दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को अपनी गति से आगे बढ़ाएं। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है तो किसी को थोड़ा अधिक समय लग जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने प्रयासों को ईमानदारी से जारी रखें और धैर्य बनाए रखें।
1: तो दोस्तों, सहनशीलता का एक सुंदर पहलू यह भी है कि यह

0: हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। परिवार, मित्र और समाज, हर जगह हमें अलग अलग सोच और स्वभाव वाले लोग मिलते हैं। अगर हम हर बात को केवल अपने नज़रिए से देखेंगे तो गलत फहमियाँ बढ़ भी सकती हैं।
1: लेकिन दोस्तों, अगर हम दूसरों की बात ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को समझें और सम्मान देना सीखें, तो रिश्तों में अपनापन बढ़ता है। कई बार एक छोटी सी समझदारी किसी बड़े विवाद को रोक सकती है। किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा धैर्य रखें, सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास करें।
0: इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना किसी सोच के साथ किया जाए, यह हमारे हाथ में होता है।
1: बिल्कुल सौम्या, क्योंकि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का नाम नहीं है। सफलता यह भी है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपने रिश्तों को महत्व दें और अपने मन को शांत रखें।
0: इसलिए दोस्तों, आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने व्यवहार में सहनशीलता और सहजता को स्थान दें। छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचें और जीवन को सरलता से जीने का प्रयास करें।
1: दोस्तों, आनंद किसी बड़ी सफलता के आने का इंतजार नहीं करता। आनंद तो हमारे आज के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसे महसूस करना सीखें।
0: जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हमारा व्यवहार सरल होता है और हमारा मन संतुलित रहता है, तो जीवन की कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं।
1: तो क्यों ना आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प ले दोस्तों, कि हम जीवन में धैर्य बनाए रखेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और हर परिस्थिति को सीखने का अवसर के रूप में देखेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि सच यही है कि सहनशीलता हमें मजबूत बनाती है और सहजता हमें खुश रहना सिखाती है।
1: तो दोस्तों, इसी सकारात्मक विचार के साथ अब समय हो गया है कार्यक्रम के पहले मधुर गीत का।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: कर साथ।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों अब बात करते हैं आज के रोजगार समाचार की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा यानी कि CGL परीक्षा 2026 के लिए लगभग 12,256 रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है।
1: यह भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए की जाएगी। ग्रेजुएशन अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
0: दोस्तों इसकी आवेदन की न्यूनतम आय 18 और अधिकतम आयु 32 वर्ष है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर कर सकते हैं।
1: दोस्तों अब समय है आप सभी के फेवरेट सेगमेंट क्विज का, जिसमें हम रोज की तरह आपसे दो सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत तक सोच कर रखने हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है,
0: हाल ही में चर्चा में रहे भाखड़ डैम किस नदी पर बनाया गया है।
1: और दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, भारत के पहले स्काई कास्ट सिस्टम का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर किया गया था।
0: तो दोस्तों ये थे हमारे आज के दो सवाल जिसके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में मिलेंगे, और जब तक आप इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढ कर रखिए। सौम्या, अक्सर कहा जाता है कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देश में से एक है। यदि हमारे युवा शिक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त होंगे तो विकसित भारत का सपना जल्द ही साकार होगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा गौतम, लेकिन आज एक चिंता का विषय यह भी है कि कुछ युवा साथियों का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, तनाव या केवल दिखावे के कारण नशे की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआत अक्सर मजाक या जिज्ञासा से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत में बदल जाती है।
0: सौम्या, नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या किसी अन्य मादक पदार्थ का, यह शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इससे पढ़ाई प्रभावित होती है, आत्मविश्वास कम होता है और कई बार कैरियर भी बर्बाद हो जाता है।
1: बिल्कुल, केवल इतना ही नहीं गौतम, नशे के कारण परिवारों में तनाव बढ़ता है, आर्थिक नुकसान होता है और कई बार अपराध तथा सड़क दुर्घटना जैसी घटनाएं भी सामने आती है। इसलिए नशे से दूर रहना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
0: दोस्तों आज भारत सरकार भी नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर रही है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और युवा संगठनों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है।
1: लेकिन गौतम, केवल सरकारी अभियान ही काफी नहीं है, परिवार और दोस्तों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी मित्र या परिवार के सदस्य में नशे की आदत दिखाई दे तो उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसका साथ देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद भी लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल सौम्या, युवाओं को अपना समय सकारात्मक गतिविधियों में लगाना चाहिए, जैसे खेल कूद, योग, संगीत, पुस्तक पढ़ना, स्वयं सेवा, नई तकनीक सीखना या किसी कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ना। खाली समय और गलत संगति अक्सर गलत आदतों की शुरुआत बन सकती है।
1: साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि किसी युवा को तनाव, चिंता या अवसाद महसूस हो रहा हो तो उसे अपनी बात परिवार, मित्र या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा जरूर करनी चाहिए। समस्याओं का समाधान नशा नहीं बल्कि सही संवाद और सही मार्गदर्शन होता है।
0: सौम्या, एक बात और, आज के युवा में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अधिक है। कई बार फिल्में या इंटरनेट पर नशे के स्टाइल या फैशन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असली हीरो वही है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और समाज के लिए प्रेरणा बने।
1: बिल्कुल, याद रखिए, नशा कुछ पल का भ्रम देता है लेकिन मेहनत पूरी जिंदगी की पहचान बनाती है।
0: तो दोस्तों आइए आज हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं, मैं स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, न ही किसी को इसके लिए प्रेरित करूंगा, अपने मित्रों, परिवार और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का प्रयास करूंगा। नशा छोड़िए, सपनों को जोड़िए, स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है।

0: क्या आपने कभी सोचा है अच्छा श्रोता बनने के लिए बहुत बड़ी कला है सुनना।
1: बिल्कुल गौतम, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी बातें ध्यान से सुने, लेकिन जब किसी और की बात सुनने की बारी आती है तो हम बीच में ही अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। यही आदत कई बार गलत फहमियों और विवादों का कारण बन जाती है।
0: वास्तव में सौम्या, सुनना और केवल कानों से आवाज़ सुन लेना दो अलग अलग बातें हैं। सही अर्थ में सुनना मतलब सामने वाले की बात, उसकी भावना और उसके दृष्टिकोण को समझना होता है।
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई अपनी बात कहने में व्यस्त है। सोशल मीडिया, मोबाइल और लगातार मिलने वाली सूचनाओं के कारण हमारा ध्यान जल्दी भटक जाता है। ऐसे में धैर्यपूर्वक किसी की पूरी बात सुनना एक चुनौती बन गया है।
0: लेकिन जो लोग सुनना सीख लेते हैं वे जीवन में बेहतर निर्णय ले लेते हैं दोस्तों। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या परिवार, हर जगह अच्छी सुनने की क्षमता सफलता की कुंजी बन जाती है।
1: दोस्तों, युवाओं के लिए तो यह और भी जरूरी है। कॉलेज में शिक्षक की बात ध्यान से सुनना, कार्यस्थल पर वरिष्ठों के निर्देश समझना और दोस्तों की भावनाओं को महत्व देना, ये सभी अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होते हैं।
0: दोस्तों, एक अच्छा श्रोता बनने का सबसे पहला कदम है बीच में टोके बिना पूरी बात सुनना। कई बार हम आधी बात सुनकर ही अपनी राय बना लेते हैं, जबकि पूरी बात सुनने पर हमारा नजरिया बदल सकता है।
1: दूसरी महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या साझा कर रहा है तो उसे पूरा समय दें। हो सकता है कि उसे सलाह से ज्यादा आपकी संवेदनशीलता और आपका समय चाहिए हो।
0: और तो और दोस्तों, सक्रिय रूप से सुनने का एक और तरीका है आंखों से संपर्क बनाए रखना, सिर हिलाकर यह जताना कि आप ध्यान दे रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर सवाल पूछकर अपनी रुचि दिखाना।
1: बिल्कुल, इससे सामने वाले को सम्मान का एहसास होता है और बातचीत अधिक प्रभावी भी बनती है। अच्छे श्रोता लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं।
0: सौम्या, क्या आपको नहीं लगता कि सुनने की आदत मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी?
1: बिल्कुल, जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो उनके अनुभवों से सीखते भी हैं। वही जब कोई हमें ध्यान से सुनता है तो हमारा तनाव कम होता है और हम स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए सुनना केवल संवाद नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सम्मान का भी प्रतीक है।
0: और तो और दोस्तों, महात्मा गांधी ने भी कहा था, पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाए जाने की अपेक्षा रखिए। यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
1: तो आइए आज से हम सभी यह संकल्प लें कि केवल अपनी बात कहने पर ही नहीं बल्कि दूसरों की बात धैर्य और सम्मान के साथ सुनने की आदत भी विकसित करेंगे।
0: और याद रखिए, अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। सुनना सीखेंगे तो समझ बढ़ेगी तो रिश्ते भी मजबूत होंगे और सफलता भी मिलेगी।
1: दोस्तों, बोलना ज्ञान का परिचय देता है लेकिन सुनना समझदारी का।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
10: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
9: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
10: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
9: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
10: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
9: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
10: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
9: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
10: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, आज हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। कुछ साल पहले जिन चीज़ों की हम केवल कल्पना करते थे, आज वही चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने हमारे काम करने का तरीका ही बदल दिया है।
2: बिल्कुल गौतम, विज्ञान की खास बात यही है कि यह कभी रुकता नहीं है। हर दिन नई खोज होती है और नई तकनीकें सामने आती है जो आने वाले समय में हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। आज हम ऐसी ही एक आधुनिक तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसे भविष्य की महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जा रहा है।
1: दोस्तों, आपने कंप्यूटर का नाम तो जरूर सुना होगा और शायद आप में से कई लोग रोज इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में कंप्यूटर किस तरह बदल सकता है?
2: तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी जुड़ी है ऐसी ही एक तकनीक से और वह है क्वांटम कंप्यूटर।
1: दोस्तों, सामान्य कंप्यूटर में जानकारी को बिट के रूप में संग्रहित किया जाता था। एक बिट केवल दो स्थितियों में ही होती थी, 0 या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में जानकारी को क्यूबिट यानी क्वांटम बिट के रूप में संग्रहित किया जा रखा है। इसकी खास बात यह है कि क्यूबिट एक समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं को दर्शाने की क्षमता रखता है, जिसे विज्ञान की भाषा में सुपरपोजिशन कहा जाता है।
2: यही विशेषता क्वांटम कंप्यूटर को सामान्य कंप्यूटर से अलग बनाती है। यह बहुत जटिल गणनाओं को तेजी से करने की क्षमता भी रखता है।
1: और दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में नई दवाओं की खोज करना, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम और जलवायु से जुड़ी जानकारी का अध्ययन और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी।
2: उदाहरण के लिए दोस्तों, कई नई दवा को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को कई प्रकार के आंकड़ों और रासायनिक संयोजनों का अध्ययन करना पड़ता है।
1: इसी तरह दोस्तों, मौसम और जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों को विश्लेषण करना पड़ता है। क्वांटम कंप्यूटर ऐसी जटिल जानकारियों को समझने में उपयोगी साबित हो सकता है।
2: दोस्तों, आज दुनिया के कई देश और तकनीकी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नई तकनीकों को विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
1: दोस्तों, आने वाले समय में विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन में और भी बड़े बदलाव ला सकती है, इसलिए युवाओं के लिए जरूरी है कि वे तकनीकों को समझें और उनसे जुड़ी जानकारी प्राप्त करें।
2: वास्तव में क्वांटम कंप्यूटर केवल एक मशीन नहीं है दोस्तों, बल्कि यह भविष्य की संभावनाओं का एक नया द्वार है जो विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई दिशा दिखा सकता है।

0: कार्यक्रम दोस्तों कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, तो अब तक तो आपने उनके जवाब सोच ही लिए होंगे। नहीं भी सोचे तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही उनका जवाब देने के लिए।
1: तो दोस्तों हमारा आज का सवाल था, हाल ही में चर्चा में रहे भाखड़ डैम किस नदी पर बना है? तो दोस्तों उसका सही जवाब है सतलुज।
0: और दोस्तों हमारा दूसरा सवाल था, भारत के पहले स्काई कार सिस्टम का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर किया गया था? तो उसका सही जवाब है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
1: तो दोस्तों हमारा आज का सफ़र इतना ही था। आज हमने आपसे बहुत सी बातें कही, बहुत सारी जानकारियाँ साझा करी।
0: दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सुनते रहिए।
1: तो दोस्तों अब हम आपसे चाहेंगे विदा, आपके युवा साथी गौतम गौड़,
0: सौम्या पांडे,
1: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही संगीतकार।

शाम 7 बजे से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के प्रथम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य ओवल लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण शाम 7 बजे से।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, शाम 7 बजे दिल्ली से रिले होगा ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के प्रथम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य ओवल लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।

0: ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम व्यू 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। संध्या के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरे

0: बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आरडी बर्मन के संगीतबद्ध किए फिल्मी गीत। कार्यक्रम है एक ही संगीतकार। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम नमक हराम। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम अभिलाषा, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म तीसरी मंजिल में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं आरडी बर्मन के संगीतबद्ध किए फिल्मी गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम द बर्निंग ट्रेन। आवाजें सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत आरडी बर्मन का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

Akashwadi at 90. फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में किशोर कुमार और आशा भोसले को, फिल्म का नाम चोर हो तो ऐसा। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे आर डी बर्मन के संगीतबद्ध किए फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देश भर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके सुधार का काम शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और उसके लिए जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री आज हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से मिट्टी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के मद्देनजर बचाव के तरीकों पर विचार कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत

0: जरूरत है। जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी देशभर में कल से लागू होने जा रहा है। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। VBG रामजी पर पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
2: VBG रामजी मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन से बढ़ाकर अब एक साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान किया जाता था, अब इसमें साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी। वहीं निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान रहेगा। कृषि मौसम में बुआई और कटाई के लिए मजदूरों की कमी नहीं हो, इसके लिए 60 दिन की राहत दी गई है। ये योजना ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और आजीविका सुरक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
1: VBG रामजी अधिनियम 2025 की प्रावधानों के अनुसार कल से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और व्यावसायिकता को कायम रखते हुए ऊंचाइयां छुएगी। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
3: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
1: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्त शक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में ये समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
4: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हो, उनको बताना है और बताना ही नहीं, उनको करवाना है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

0: वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
1: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। VVG रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा। ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी। और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योग पीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योग अभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई।

0: जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन, NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच आयोजित किया गया। मैच का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। रीनीट परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पहले चरण के दौरान मकान सूचीकरण और आवास गणना काम में धौलपुर जिले ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़कों माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण अरवाना टेमसर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। VBG रामजी कानून 2025 कालों देश भर में लागू भेजावेला। मनरेगा री ठौर लेवेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा ओहदारो कामकाज संभाल्यो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलों रा भवना री हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासा री बिरखा शुरू होवण रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश में हादसा होवण और जमीन धंस जावण री शंका वाली सड़कां री पिछाण करी

0: पहुंची है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चों आरा सुधार रो काम शुरू कीनो है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सड़क माथे हिफाजत रे बारे में राखी जा एक कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। गडकरी कहो के उचित निशान लेन मार्किंग और अंडरपास बनावन सागे अंतर्राष्ट्रीय मानकान मुजब सड़क इंजीनियरिंग काम लेवन री कोशिश करी जा रही है। श्री गडकरी सड़क माथे हिफाजत ने बढ़ावो देवन में जनता री भागीदारी बढ़ावन और मोटर गाड़ियां चलावन वालाओं यातायात नियमों री पालना करन री अरज कीनी। वह लोगों सड़क हादसा में जख्मी वेवन वाला री मदद करन और वाने सही भगत पर अस्पताल पुगावन री अरज कीनी।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: सरकार मिट्टी और वहां सारू जरूरी खाद री मात्रा री जानकारी देवन बाबत मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा रा हिसार माए खेत बचाओ अभियान रा समापन समारोह माए आ जानकारी दीनी। वह किसानों मिट्टी री उत्पादकता बनाई रखन सारू खाद और कीड़ा मारन री दवाइयां जरूरत रा आधार काम लेवन री अरज कीनी। कृषि मंत्री कहो के सरकार अल नीनो रा असरों कम बिरखा वेवन री शंका न ध्यान रखता थका जरूरी इंतजाम कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: देश में काल 1 जुलाई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG राम जी लागू है जावेला। आ देश का गावाई हलका माए माली व्यवस्था ने समावेशी और मजबूत बनावन सारू मील रो पत्थर साबित फैला। VBG राम जी रबारा माए पेश है न्यूज डेस्क सालेहा गाजी री रपट।
3: वीबी जी रामजी मनरेगा री ठोड़ लेवेला इरा तहत गावाई हल्का माए लोगा ने 100 री बजाय 125 दिन रा काम री गारंटी मिलेला। वीबी जी रामजी रा तहत मजूरा ने हर हफ्ता मजूरू रो चुकारो सीधो खाता माए करियो जावेला। तय मियाद माए काम मुहैया नी करावन री सूरत माए बेरोजगारी भत्ता मजूरी रा चुकारा माए मोड़ो वेवन परा क्षतिपूर्ति रो वैधानिक प्रावधान करियो जावे है। खेती बाड़ी री रुत माए बुवाई कटाई सारू मजूरा री कमी रोकन सारू 60 दिन री राहत दिरी जी है। वीबीजी रामजी गावाई हल्का माए आमदनी बढ़ावन और काम धंधा री हिफाजत मजबूत बनावन री दिशा माए खास जतन है।
0: वीबीजी रामजी 2025 रा प्रावधान रा मुजब कालू काम रो बगत समारे 9:05 बजे ताई रहवेला। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेना प्रमुख रा ओहदा रिटायर वे गया। ये मौके वे कहो के फौज ने फौजियां कमांडरां पहले वाला फौजियां वारा परिवारां और देश री जनता रा अटूट भरोसा ताकत मिले है। जनरल द्विवेदी कहो के भारतीय सेना लारला 2 साल माए हर मोर्चा माथे तुरंत काम करन रा बूता संतुलन और सावचेती लगातार बनाई राखी।
4: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
0: जनरल द्विवेदी नुआ सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने जिम्मेदारी सौंपता थका। जनरल सेठ री अगुवाई में भारतीय सेना री माथो ऊंचो करण वाली परंपरावां बनाई राखता थका व्यावसायिकता और पक्का इरादाओं नई ऊंचाइयां हासिल करन रो भरोसा जतायो। सेनारी दक्षिण पश्चिम कमान रा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल

0: मंजिंदर सिंह ही आज रिटायर फेंकिया। ये मौके वे जयपुर सैन्य स्टेशन रा प्रेरणा स्थल मथे शहीदां ने श्रद्धा भाव सागर याद कीना। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि करीब 40 साल री सेवा रे दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर और आतुणी सरहद मथे कई खास कमान और स्टाफ री जिम्मेदारियां निभाई। वह इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर री जिम्मेदारी कामयाबी सागे पूरी कीनी। नई दिल्ली में काल भया ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पाछे जयपुर आवण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो शहर में न्यारी न्यारी ठोड़ा स्वागत करीचियो। मुख्यमंत्री राज्य में जल सुरक्षा और पूरा विकास माथे पड़वा वाला सकारात्मक असर रे बारा में विचार बताया। वो कहो के ओ करार विकसित राजस्थान री मजबूत नींव बनेला। श्री शर्मा कहो के सरकार जनताओं करीचे हर वायदा ने पूरो करण री कोशिश कर रही है।
1: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है। हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए और हमें यह विचार भी करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है। विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, और मेरे भाइयों उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हो, सार्वजनिक कार्य हो, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। राज्य री सरकारी स्कूलां सारू किणी हालात माए हर जर्जर और असुरक्षित भवन काम नी लेवण रा हुकम दिया चिया है। स्कूल भवना री हिफाजत और मरम्मत रा कामा रो जायजो लेवण सारू आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए प्रारंभिक शिक्षा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव आ जानकारी दीनी। यादव सगली स्कूलां रा भवन री गहराई उ जांच करावण रा हुकम दीना। वे बतायो कि लारला माली साल माए 2032 स्कूलों जुड़िया विकास और बनाई चुनाई रा काम करी जिया, जबकि चालू माली साल माए करीब 550 करोड़ रुपया रा खर्च वाला काम कराया जावेला। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन काल जयपुर माए शुरू भेला। विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस मुद्दा माथे विवरण वाला ई सम्मेलन रो उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेला। ई मौके NCEG प्रदर्शनी लगाई जावेला और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा नुआ कामा री शुरुआत फैला। सम्मेलन रा दूजा दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जावेला। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोई ई कार्यक्रम माए शिरकत करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकारी सेवा बेहतर तरीकों पुगावण नुआ कामा और डिजिटल सेवावां री पहुंच जनता ताई बधावण माए ओ सम्मेलन खास साबित फैला।
2: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन रबारा में और ब्यूरो माना खबर नवीस हूँ।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशन

0: और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश में आवता 3-4 दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं रात चोखा हालात बनी उड़ा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र 2-4 जुलाई बीच राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं रा आसार जताया है। इस दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई थोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनी उड़ो है। लाडला 24 घंटा माए श्रीगंगानगर माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। बाड़मेर माए आज आंधी चाली। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा माए जख्मी लोगों ने मदद करण अरवाना टेम सर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। VBG रामजी कानून 2025 काल देश भर में लागू भेजा वेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा होदारो कामकाज संभालियो। राज्यरी सगली सरकारी स्कूलां रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासारी बिरखा स्वरूप वन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के प्रथम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य ओवल लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण, जिसे दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: ओवर टू संजय। संजय, वंडरफुल फर्स्ट ओवर।
2: बिल्कुल, अगर आप वेस्ट इंडीज के लिहाज से देखें तो एक अच्छा ओवर, और जहां तक शुरुआत का सवाल, तो कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं मिली गेंदों को, ऑन द स्टंप्स फेंका, किसी तरह का बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला शुरुआती ओवर में। हालांकि हवा तेज है वहां पर, किमकार्थ इस समय गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है, दूसरा ओवर है, और मैथ्यूज जो कि सबसे सॉलिड बैटर हैं टीम की, ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर थोड़ा सा बाहर की ओर निकली थी, पॉइंट की दिशा में उस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, कोई रन नहीं। अच्छी बात यह कि कोई बहुत जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे वेस्ट इंडीज के ये दोनों बैटर्स, उन्हें पता है कि उन पर कितना दारोमदार है टीम का, और अगर आप इन दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 115 और 116 है। वृंदा राठी भारत की हैं और इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रही हैं सेमीफाइनल में, और किम कॉटन है उनके साथ जो कि न्यूजीलैंड की, 8 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा टप्पा खा करके बाहर निकल रही थी, मैथ्यूज ने बल्ला चलाया जरूर था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, किस्मत अच्छी। और एक परेशानी का दृश्य देखने को मिला कुछ समय पहले, जब डियंड्रा डॉटन को तकरीबन 2-3 लोग उठा करके लेकर के जा रहे थे।

0: समझ से परे है कि डॉटन को हुआ क्या, लेकिन एक बहुत अच्छी बैटर है टीम की, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो वापस लौटेंगी। शॉर्ट थर्ड स्लिप, डीप बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार दोनों स्लिप्स के बीच में से गेंद निकलती हुई चली गई चार रनों के लिए। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Well, that was a freaky shot on the offside, not intended, but squeezes through the third man region, through the slip cordon, and that was a lucky boundary for the side, almost to the outstretched hands of the fielder, Sanjay, that was close.
0: बिल्कुल नजदीक मामला हो सकता था, और काफी तेज छलांग भी लगाई थी उस गेंद को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन संभव नहीं, लेकिन पावर प्ले है, और पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लगातार गेंदों को आप स्टंप पर टप्पा डाल रही हैं और थोड़ा सा बाहर की ओर निकालने की कोशिश, एक हल्का जो स्विंग का मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है गार्थ की गेंदों पर, एक स्लिप बिल्कुल विकेट से सटे हुए, और आप उसे शॉर्ट थर्ड मैन कहें, थोड़ा सा काफी पीछे

0: नहीं, लेकिन पावर प्ले है और पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लगातार गेंदों को आप स्टंप पर टप्पा डाल रही हैं और थोड़ा सा बाहर की ओर निकालने की कोशिश, एक हल्का जो स्विंग का मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है गार्थ की गेंदों पर। एक स्लिप बिल्कुल विकेट से सटे हुए और आप उसे शॉर्ट थर्ड मैन कहें, थोड़ा सा काफी पीछे स्लिप के और वहीं से उन दोनों के बीच से वो कैच निकलता हुआ। गार्थ ने अब तक 5 रन दिए हैं। वेस्ट इंडीज ने 13 रन बना लिया, अच्छी शुरुआत। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और खासतौर पर मैथ्यूज जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमती हैं तो फिर किसी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर देती हैं। जोसेफ उनका कितना साथ देंगी, 3 गेंदों पर अब तक 1 रन बनाए हैं। मैथ्यूज ने 7 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर ये जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी नहीं तोड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सफर आसान नहीं रहने वाला है। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो अनप्रेडिक्टेबल मानी जा सकती है, हारने के लिए किसी भी कमजोर टीम से हार जाए और हराने के लिए दुनिया की मजबूत टीमों को भी शिकस्त दे दे। हल्के से इस गेम को खेलना चाहती थी, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाई, लेकिन कोई रन नहीं, सुरक्षित अपनी जगह पर। तो इस लिहाज से गार्थ का ये बेहतर ओवर, अच्छा ओवर कम से कम, जो स्टंप्स लाइन की डिलीवरीज लगातार मैथ्यूज के लिए डाली जा रही है और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में बैटर को बहुत ज्यादा खेलने की आजादी दे देंगे, स्ट्रोक्स की आजादी दे देंगे, तो फिर रन्स बनने की शुरुआत होगी और फिर प्रेशर आप पर पड़ेगा। जोसेफ 1 रन पर, मैथ्यूज 11 पर। ये गेंद और इस बार मोड़ दिया है, गेंद फिर जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद फील कर ली गई। मौका यहां पर रन बनाने का, दौड़ करके 2 रन पूरे किए 15 2 ओवर के बाद।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: The first two overs we've seen the West Indies batters playing with consumaties. They're not in any kind of bother. They are playing with comfort and I think the Australian bowlers have to now apply themselves and pitch the ball in the right areas. This is more important on a pitch where, you know, the first half, you will have to keep the batsmen or the batters guessing and keep them in business. Both Hamilton and Garth have tried their best. Hamilton looking a bit pedestrian today, but Garth did bowl well. But the batters were even cleverer. They overwhelmed and made sure that they took advantage of the ball being slightly short, go back into the crease and play the ball. Here is Molyneux coming in, the captain of the side now, left arm. And that ball comes in with the arm. And the batter was so clever, Matthew.

0: उपलब्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
1: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।

0: ओवल लंदन में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
1: As the next delivery, that shot of a length and off the back foot, just plays it across at the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it. And that's a boundary onto the onside to the mid-on region.
2: ये लगा आभा का चौका।
3: तो एक और चौका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर। रनों की रफ्तार में कहीं कोई

आई मिलन की बेला, इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम वो कौन थी।

ये आवाज़ थी मुकेश और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था कांच की गुड़िया। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। तलत अजीज और साथियों की आवाज़ में फिल्म का नाम डैडी।

0: तलत अजीज और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ

0: बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding.